पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, पीर से जुमेरात, रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: हे वट एडियम शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मा के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माओ जी बेहतरीन गिजा भाव आई बार इनी जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साइकिल्स स्मार्ट वॉचेस इधर हम बड़ा ख्वाब देखें शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: आप सुन रहे थे, अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: medicine.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंगबंदी वारो फ़ैसिलो पाकिस्तान जे चवण ते हिकु फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीज़ूं मुकमल तौर ते क़बूलण जोगियूं न आहिनि। वीहनि सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम वातल करण वारी तजवीज़ सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत तसली जोगी न आहे। आबन हुरमज़ बाबति कंहिंजी मदद ज़रूरत न आहे। नई चीनी सरकार खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी पई वेंदो। ताइवान बाबति अमरीकी
0: choose power or elegance. He chose both extremely. Every muscle sculpted, every movement deliberate. His presence arrives before him. Force, he is an engineer designed to be seen. Extremely perfect in both the style and the substance. Greed, built for the extreme.
1: चयो त असां वटि अमरीका ते तबाह करण जो मुआदे खां पहिरियां सभु शयूं वाज़े थियणु घुर्जनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां गाॾियुनि में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आबना हुरमज़ अमरीकी जहाज जे मुकमल ख़ात्मे बाद ई खुली सघंदो। आबना हुरमज़ हिन वक़्तु जंग में मुलस मुलनि खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे। طاقت جو استعمال نتیجہ نہ ڈیندو ایران سمیت کرن جو حل مشاورت سے نکرن گرجے مسا ایران ائیں بین ملکن جے مفاد میں ائے جی ڈی بنی وزارت چوا ہے تے تکرار جے نپیرے لا گالن رابطن وارو

जल्द बहाल थियणु घुर्जे, ईरान जंग शुरू ई न थियणु घुर्जे। हा जेका जंग जो जारी रहण कंहिंजे मफ़ाद में ई न हूंदो। चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे ई हथी ॾिनी आहे।

अमरीका जो मुकाबलो करण लाइ वधीक मज़बूत कयो। अमरीकी ऐं इसराइली हमलनि दौरान जदोजहद में समूरी क़ौम मुतहद हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़्तबा ख़ामेनेई जो बयान, रत जे आख़िरी फुड़े ताईं ईरान सलामती ऐं आज़ादी जो दिफ़ा कयो वेंदो। ईरान वटि जदीद ज़मीनी ऐं फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मौजूदु आहे। जंग में फतह ईरान जी थींदी।

0: दुनिया अकेलो ही करण की कोशिश में भारत पा अकेलो थी रो है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राज अगोणे सरबराह जो एतराफ़ आई एस दिलत है तो बरतानवी रशियाती इदारे खेन सिवड़ींदे जो पाकिस्तान के तनाई में देखने की कहानी पुरानी थी चुकी। पाकिस्तान कदें न टुटन, पाकिस्तान हाँ ईरान अमेरिका जंग में टाकड़ो कर रो है, वो किरदार भारत के अदा कर घुर्जे। हाँ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लात, पेट्रोल ऐं डीज़ल फी लीटर 5-5 रुपया सस्तो, क़ीमतुनि में लात बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 409.78 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 409.58 रुपया फी लीटर मुक़रर, नोटिफिकेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल आहे। हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशीन जे लाइ 0327-99-84-700।
3: जदीद लहर जार सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी, एहतियाती उपाउ वठो। सूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो खे ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे ताउन सां अवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
4: हर पहर जिंदगी GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
0: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवाट ईरान से जंगबंदी वो फैसलो पाकिस्तान चवण के एक फेवर तौर ईरानी पर ईरानी तजवीज़ न मुकम्मल तौर से कबूलन जो यो ना बेन साल एटमी प्रोग्राम मुअतल करने वाली तजवीज़ सुठी है यूरेनियम के रचाव बाबत लेवल की जमानत तसली जोगी ना है अपना हुरमस बाबत कें मदद की जरूरत ना है नई चीनी के चीनी सदर के कें मदद भी चया है कुछ डी में ईरान का तेल वाल चीनी कंपनियों तक पाबंदी हटाने फैसलो किया वे तो ताइवान बाबत अमरीकी पॉलिसी तब्दील नाहे थी ताइवान के हथियार देने की मंजूरी ना डिनी थी सके तो मंजूरी दिया या न दिया चीन सा तारीखी व्यापारी मुआहिदा थे जैसे अमरीका के फायदो थी दो।

पेट्रोलियम चंडियागंज में मामूली लात पेट्रोल एंड डीजल फी लीटर 55 रुपया सस्तो कीमतन में लात बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपया 78 पैसा और डीजल की नई कीमत 409 रुपया 58 पैसा फी लीटर मुकरर नोटिफिकेशन जारी। शादी तकरीब दौरान घोर घुरण तां ख्वाजा सरां जो ख्वाजा सरां ते हमलो शदीद जख्मी ख्वाजा सरां हाजन शहर जो चवण आए तो शादी तकरीब में घोर घुरण तां मामले तां ख्वाजा सरां दायम शेख हमलो करे सख्त जख्मी कयो जवाबदार ख्वाजा सरां खिलाफ कार्रवाई करे इंसाफ कयो वञे।

0: अमीरपुर माथेरो भट सां शेख सुरेन में संगापी तकरार तां झेड़ो अठ जणा जख्मी गोठ वागड़ी में झड़ी दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सां ॿिनि धुरनि जा अठ जणा जख़्मी थी पिया ऐं इस्पताल मुंतकिल कया विया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवांजे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 AM کھا شام 6 PM تائیں پروز جمعہ 12 PM تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327 99 84 763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 PM ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
6: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरन ऐं सकरन जो आवाज़
7: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां, हाने अवाजे पंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे खां शाम 6 बजे ताई बरोज जुम्मो 12 बजे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: कबूल कर न तो तुझे कुटुंब खेम खणंदासी। पाकिस्तान के दुनिया में अखिलो करण की कोशिश थी रो है। भारतीय एस दलत है तो बरतानवी रिश्ता इदारे के इंटरव्यू डींदे पाकिस्तान के तनहाई में धिकण की कहानी पुरानी थी चुकी। पाकिस्तान कदें न टुटो। पाकिस्तान हाँ ईरान अमेरिका जंग में टाकटो कर रो है। यो किरदार भारत के अदा करण घुर्जे हा।

अॼु खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण जो चवण आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं आवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। सिंध हुकूमत ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि आवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणायो आहे।

0: खैरपुर में शादी तकरीब दौरान घोर घुरण तक ख्वाजा सरान जो एक ख्वाजा सरा ते हमलो शदीद जख्मी ख्वाजा सरा हाजन शर्द चवण आए शादी तकरीब में घोर घुरण वाले मामले ता ख्वाजा सरा दायम शेख हमलो कराए जख्मी कयो आहे ख्वाजा सरा खिलाफ कार्रवाई करे इंसाफ कयो वञे। दड़ो में गोठणन जो बासर जे ज्यातन खिलाफ एहतजाज गोट अरब चावरी वासन जो चवण आए तो बासर 33 फुट वेकरो लंग बंद करे पंजी जमीन में शामिल करे छो आहे। लंग बंद होने सबब सजे गोट के परेशानी थी रही है बासरन खिलाफ कार्रवाई करे लंग खोल रहा वने। मीरपुर माथलो भरसा शेख बिरादरी के बिंदुरन में संगावती तकरार तां छेड़ो 8 जना जख्मी गोट वागणी में जेड़े दौरान लट्टियों और सरोटा लगन सबब बिनी दुरन जा 8 जना जख्मी थी पिया अस्पताल मुंतकिल। बंग्लादेश ए पाकिस्तान विच में बी टेस्ट मैच लंच के वक्फे से बंग्लादेश 3 विकेट्स 101 रन सुठाए वरतियों। बंग्लादेश के मोहम्मद हसन 0 ताजद हसन 26 ए मोमिन अल हक 22 रन अल हसन शान 2 26 ए मुश्फिक रहीम 18 रन सुठाए क्रीज से मौजूद। पाकिस्तान पारा मोहम्मद अब्बास 2 खुरम शहजाद 1 विकेट हासिल कई। पाकिस्तान पारा बी टेस्ट मैच में 3 तब्दीलियों कई व्यू शाहिन शाह अफरीदी इमाम उलक इनाम अली टीम का बाहर साजिद खान बाबर आजम ए खुरम शहजाद के टीम में शामिल किया वो।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सबनी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी पा वो बिना जरूरत के घर का बाहर न निकरो बाहर निकरण वक्त कंध जिस्म के ढको घणो पानी वापरायण की आदत ठाओ ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO स्टार नेटवर्क के ताउन सा आवाम के आगाही लाए पेश कयो वयो।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
6: GAFM 88
5: नेटवर्क
7: सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's one.

0: एम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: IMF बिजली ऐं गैस महांगीकरण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FVR जो टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बेवाम खां 1727 अरब उगारण जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ममलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात, बितरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू अदालतुनि विच में सहकार वधाइण ते तफ़ाक़। मोहसिन नक़वी चयो त बितरफ़े सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।

सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻियल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान, मार्केट्स मामूल मूजिबि खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजली नाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत में रिथियल आईसीसी मीटिंग में शिरकत खे हुकूमत जी मंज़ूरीअ सां मशरूत करे छॾियो। मोहसिन नकवी नई दिल्लीअ में रिथियल गॾजाणी जी दावत मिलण जी तसदीक कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म इजाज़त ॾिनी त गॾजाणी में शिरकत जे लाइ भारत वेंदुसि। खैरपुर में शादीअ जी तकरीब दौरान ज़ख्मी ख्वाजा सरा हाजन सर चयो आहे त शादी तकरीब में घोर तां ख्वाजा सरा दायम शेख हमलो कराए सख़्त ज़ख्मी कयो आहे। जवाबदार ख्वाजा सरा ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। दड़ो में ॻोठाणनि जो बासर जी ज़्यादतियुनि ऐं लंघ ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ अरब जामरी वासियुनि जो बासर ते लंघ ते कब्ज़ो करे ज़मीन में शामिल करण जो इल्ज़ाम। मुजाहिरीन चयो आहे त लंघ बंदि हुअण सबबि सॼे ॻोठ खे परेशानी थी रही आहे। बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे लंघ खोलायो वञे। मीरपुर माथेलो भर सां शेख बिरादरी जी धुरियुनि में संगावाती तकरार सां जहिड़ो 8 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ वाघणीअ में जहिड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जा 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया। बंग्लादेश ऐं पाकिस्तान में ॿी टेस्ट मैच जो पहिरियों ॾींहुं बंग्लादेश जी बैटिंग जारी। क़ौमी बॉलर्स बंग्लादेश विकेट्स वठण में कामयाब।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: GAFM 88 Network, Sindh ki awaaz. This program is brought to you by
1: Jadeh maa panjo khayal rakhan diya hai, ta sehat naslan tahi halan diya hai. Hi pegam Kash Foundation and Canadian Government je tarfaan pesh kayo vayo.
2: जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा, वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

शाम से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड एज स्किन ब्यूटी शो. आपकी सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है. यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड एज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स. अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो हमेशा बढ़ती रहे, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, एंड एज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है. तो आप लोगों को बताएंगे तफसील के साथ साथ. लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आप लोगों को आज के प्रोग्राम की टॉपिक की जानिब ले जाते हैं. उसके बाद जो आप लोगों को बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनेंगे. तो यहाँ पर आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा रहा है, वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग जो है ना, कुछ लोग तो स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं. तो ऐसा होता है कई मरतबा आप अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस भी जाते हैं. बहुत जगहों पर ऐसा सीन हो जाता है, आप फिर ये बोलते हैं कि भाई काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो आज आप मुझे ये बताने वाले हैं, क्या आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में कहीं पर फंस गए हैं, और फंसे हैं तो कैसे बाहर निकले उस सिचुएशन से. बिल्कुल जी, ये आज आप मुझे बताएंगे. ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं शो के अंदर, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR की सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो GLR का ना FM 88.8 हमारा पेज है, और GLR का ना FM 88.8 के पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर हमारी पोस्ट आपको मिलती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है. जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मेंशन कीजिए, और उनको भी बताइए कि वो भी खूबसूरत बन सकते हैं भाई जान. तो आप भी खूबसूरत बनिए, खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुश आमदीद. और साथ ही साथ आज आप मुझे बता रहे हैं कि आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में फंस गए हैं, और फंसे हैं तो फिर बताएं सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आज. आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी. और ये तो हर किसी ने ट्राई किया होगा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो हर कोई कर रहा होता है. ओके जी, इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. बिल्कुल जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ, वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है, जो कि विटामिन सी वाला फेस वॉश है. और उसके साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, तो विटामिन सी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज का. और अगर आप जो है वो साबुन लगाने वाले लोग हैं, साबुन लगाते हैं, तो भाई व्हाइट एज का सोप भी मौजूद है, सोप भी आप ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप गर्मियों में कोई लाइट वेटेड फार्मूला चाहते हैं, लाइट वेटेड क्रीम चाहते हैं, जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से भी बचाए और आपकी खूबसूरती को भी बहाल रखे, तो उसके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है. और व्हाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब भी मिल रहा है. और डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ये क्रीम जो है, एंटी एक्नी क्रीम आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार होता है उन लोगों के लिए, खास वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं, एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, तो भाई आपने डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब इस्तेमाल करना है, जो कि व्हाइट एज वालों का है, ठीक है. और इसी के साथ साथ लोशन भी मौजूद है इनका, और हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है. बहुत सारे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमेशा खूबसूरत रहते हैं. और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपकी सिटी में मिलनी चाहिए जाहिर सी बात है, तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595. बिल्कुल जी 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइए ये तमाम प्रोडक्ट. ओके जी, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, आप काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर बहुत ज्यादा कर दिया करें, ठीक है. शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी जल्दी से. और इसके अलावा अनवर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं उस्ताद बुखारी की शायरी, उम्मीदों आसरा पलिया को न होंदई, करे याद घोड़ा झलिया को न होंदई, जमानो घणोई रुलियो तू भी होंदे, असा जिला मानो मिलिया को न होंदई. वाह वाह, वेरी नाइस. और आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, वक्त वालों को तो मयसर हो, हम कम वक्त अब किधर जाएं, बस आप यहीं बैठी रहिए हमारी पोस्ट पर. यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, यूनिस खोड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें दौलत गोट से सुन रहे हैं, वेलकम जी. अहमद आलार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हिदायतुल्ला अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम. इमरान अली उज्जैन भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी.
अनवर भाई बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगाएंगे, लेकिन ये बात है कि मुझे जरा सिंगर का नाम जो है ना वो मेंशन कीजिए। मुझे नहीं पता ये गाना मैं सर्च करूंगी तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नूरी संतनियो भाई भी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम लाड़काना अदि सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दे दी है मुझे। और उसके अलावा है जी मोहम्मद जमान, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, सो आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। किशोर भाई कहते टॉपिक हम बचपन से स्मार्ट हैं तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम आप बचपन से करते हो उसमें कभी धोखा नहीं खाते। ये तो है वैसे, हाँ वैसे आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चले, लेकिन आज बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं ना जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सारे लोग मुझे ये बताएंगे कि जब कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और आप कहीं पर फंस गए अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से, तो वहां से आप कैसे बाहर निकले, ये आज आप मेरे साथ एक्सपीरियंस जरा अपना शेयर कीजिए। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर दी जा रहे हैं। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए और इसी के साथ साथ लगाते जाइए जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। सुनते रहिए प्रोग्राम वाइट एज एंड टी एस के ब्यूटी शो।

0: मौसम गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती
0: ओनली ऑन GFM 88 नेटवर्क।
2: This program is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हाँ हैरत तंगे जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर अधिक मशवरे रबते 0327-99-84-763।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

टीह वाइटामिन जा कैप्सूल मौजूद आहे जेके तव्हां जी स्किन जी हर वाइटामिन के पूरो कंदा ऐं इन सां गॾोगॾु रोज़ाना तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। ही लाइट वेटेड फार्मूला आहे। तव्हां नॉर्मल कोई भी फेयरनेस क्रीम चाहियो था ऐं तव्हांखे सुठी फेयरनेस क्रीम नाहे मिलंदी त तव्हां वाइट एस जी लवली क्रीम बिल्कुलु लॻाए सघो था। ऐं वाइट एस जी लवली क्रीम जे अंदरि जेको आहे सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे जेका तव्हांजी स्किन खे जेका उस जे किरणनि खां बचाईंदी आहे ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदी आहे। सो इन जे अंदरि जेके न वाइटम्स मौजूदु आहिनि वाइटमिन्स जंहिंमें बी थ्री आहे वाइटमिन सी आहे वाइटमिन ई आहे वाइटमिन डी आहे खोड़ सारा वाइटमिन्स आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त कंदा तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदा ऐं तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाईंदा। सो वाइट एस जी जेका लवली क्रीम आहे न इहा त तव्हां सभु लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं उन खां अलावा इन में का बि एज लिमिट न आहे। तव्हां हर एज वारो माण्हू इनखे इस्तेमालु करे सघो था। तव्हां स्कूल गर्ल आहियो कॉलेज वेंदा आहियो यूनिवर्सिटी वेंदा आहियो ऑफिस वेंदा आहियो कोई बि वॾी जॉब कंदा आहियो नंढी जॉब कंदा आहियो कुझु बि कंदा आहियो त तव्हां वाइट एज लवली क्रीम आहे न उहा तव्हां लाज़मी अप्लाए करे सघो था लाज़मी ट्राए करे सघो था ऐं तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न ग्लो बि ॾींदी ख़ूबसूरती बि ॾींदी तव्हांजी स्किन खे हमेशह फ्रेश ऐं ग्लोइंग बणाए रखंदी। सो लाइट वेटेड फार्मूलो आहे तव्हां ईज़ीली वठी सघो था ऐं बिल्कुलु जेको आहे तव्हांजी अफोर्डेबल प्राइज़ जे अंदरि तव्हांखे मिली वेंदो। सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो तव्हांखे रिज़ल्ट्स कीअं मिलिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु तव्हां अगरि पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हांजे लाइ नंबर आहे जनाब जेको तव्हां लाज़मी डायल कंदा ऐं नंबर आहे 03 1579 05 95। ओके सो जल्दी जल्दी नंबर ते राबतो कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं इस्तेमालु कंदा वञो वाइट एज जा प्रोडक्ट जेके तव्हांजे लाइ तयारु कया विया आहिनि। ओके सो मुंहिंजो वहां खां सवाल पुछो आहे बाबा त तव्हां मूंखे ॿुधायो कॾहिं तव्हां ओवर स्मार्ट बणजंदा आहियो यानी कि खोड़ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि ओवर स्मार्ट बणजंदा आहिनि ऐं कई मरतबा पंहिंजी ओवर स्मार्टनेस जी वजह सां उहो फासी बि पवंदा आहिनि किथे न किथे त तव्हां मूंखे ॿुधायो कॾहिं छा तव्हां सां इहो सीन थियो आहे अगरि थियो आहे त तव्हां उन केस मां कीअं निकिता आहियो तव्हां कीअं पंहिंजी जान छॾाई आहे ऐं अगरि तव्हां ओवर स्मार्ट थियण जो तव्हांखे ॾाढो शौक़ु आहे त बाबा थोरो हथु हल्को रखो। उन खां अलावा गानो लिस्ट में मौजूदु आहे गानो ॿुधंदासीं तव्हांजे मैसेज तरफ़ अचूं था तव्हां छा था चओ इहो बि ॾिसंदा हलंदासीं तव्हांजा जेके कॉमेंट आहिनि जेके तव्हां मूंखे फेसबुक ते ॿुधो पिया तव्हां काइंडली पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर ॾाढो कंदा कयो ठीकु आहे घणो कंदा कयो लाइक ऐं शेयर कयो जीअं माण्हुनि खे ख़बर पए त मार्केट में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया आहिनि ऐं तव्हांखे इस्तेमालु करणा आहिनि जे तव्हांजी ख़ूबसूरती वधे ऐं तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहे।

मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई। वीरू मल मेंघवार हमारे साथ है, कहते वीवीआईपी शो मीरपुर खास से सुन रहा हूँ। थैंक यू जी वीरू मल भाई, आपको वेलकम करते हैं। सलीम रजा बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। गुलाम कादर भट्टी वालेकुम अस्सलाम, कहते जी आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है। फ्राम मटियारी से प्लीज सॉन्ग आप कितने हसी हैं, चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना हम लगाएंगे, ठीक है। और नूरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं शो, अच्छा कहते हैं शो बाजी नहीं करता हूँ, हमेशा नॉर्मल होता हूँ। चलिए ये भी अच्छी बात है। अच्छा उनके अलावा इकबाल आशारी भाई हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम जी। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, आइए मासूम नो चालाक ब्रो, ओके ओके। किशोर भाई लिखते हैं कि प्यार में भीख मांगने का दर्द समझते हो, और भीख में भी अगर वो प्यार ना मिले उसका दर्द समझते हो। बिल्कुल जी समझते हैं।

मेसन और बानी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मेसन साला, खुश आयो। उदास लड़की हमारे साथ है, हमारी निदड़ी, वेलकम टू यू। कहती वेलकम टू शो ओपा जानी, वेलकम टू यू ओपी। आप कहाँ गुमसुम है ओपी, बताएं तो जरा। हाकिम राज हमारे साथ मौजूद है, शो इज बेस्ट। थैंक यू हाकिम, आप हमें मिट्टी से सुन रही, दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी। वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है। वफा शहजादो मक्सी भाई आपका भी वेलकम हो गया जी। और साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। एक और मजे की बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाइट एश अगर आप ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं तो भाई आपके पास जो है ना वो फेयरनेस क्रीम है, और उसके अलावा लवली क्रीम जो है ना ये भाई तो आपके लिए मतलब ऐसा है कि गेम चेंजर वाला काम करेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, सर्दियां हो या गर्मियां हो आप लाजमी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए सोप भी मौजूद है और फेस वॉश भी मौजूद है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस तुम दिल रेडी कयो।

नसीम अहमद घोड़ो भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। नसीम भाई छाला तांजो खुश आयो। और मुलाजिम भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम। और उसके अलावा नसीम भाई क्या कहते हैं, काफी टाइम खां पोए तमां के बुधाने जो टाइम मिलियो पर तमां जा टह के सागा या है बस जियो के रेस ये न। और कहते हैं स्क्रीन ते मायू तो सफा भलू आए न। बिल्कुल जी। और कहते हैं मुस्कान अवल हिकड़ी हिकड़ी क्रीम जी डबी तू वठी दे मां लगाए दसा अगर सोनो थी वयस त बी डबी मां पान वठंदस अगर इंगे रहो त पो इलाही सारा लिसनर आइन के मुखी वठी देणी पवंदी एक दफो ता पान वठो अगर तमा के मजो अची हो त पो ता जी दिल चोंदी वराए पे वठो सही आ मां हिक के राजी न कंदम ना मुजा सब लिसनर आइन त मां सोचांदी त ता सब अवल पान वठो तमा के मजो इंदो बाबा लगाए जदी तमा वाइटी जी क्रीम लगाईंदा ना पो तमा के रिजल्ट मिलंदा पो ता पानी चंदा पैसा वसूला बाबा ओके जी। अब्दुल रजाक जरदारी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम नवाबशाह, वेलकम वेलकम। निदड़ी कहती है कि मैं यूज करती हूँ व्हाइट एज लवली ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश भी लूंगी। ओके ओके। अहमद कहते हैं थैंक्स।

अच्छा यार तो गाल वैसे थोड़ी ऐसा नमन दासी सोना जगह हुंदा है ना बेवफा नायन हुंदा बाबा यो के तवा की दसी हुआ है सोना तो भला हुंदा है अन्या अगर तुम वाइटी जो प्रोडक्ट लगाई ना तो अन्या सोना थी वा तुम लगाए बाबा कें गालन ते ध्यान ना कर एडम कहती है कि प्लीज प्ले ओके ओके और कहती दिलबर दोस्त जाने सिद्रा ये आपको डेडिकेट है गाना ओके जी मैं लगाने की कोशिश करूंगी मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहरी वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है सॉन्ग सुनाए फायसा अली का ओके जी फायसा अली लगाएंगे यासीन गुटाड़ो हमारे साथ मौजूद है सकरण से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अमा बुधायो की आयो वाइट एश एंटी स्किन प्रोडक्ट गर्मी में यूज करण सही आहिन सही बिल्कुल सही आहिन बाबा बिल्कुल गर्मी में यूज करे सगो था तरी तां जला गर्मी में प्रोग्राम आंदो आए न गाल के समझ ना कयो यासीन भा तमाम बिल्कुल लगाए सको था नो टेंशन सही और फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह के सलाम अदी शो नाइसा तांजो हुमेरा चन्ना जो कोई भी गानो बुधराए जो हाजिर हाजिर नी ओ हुकुम कयो और मिरपुर खास का अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी अच्छा या वरी केड़ी गाला भला अच्छा इते पैनल ते केंजो ना खाली मैसेज मिलो है अगर न पढ़ा तांजो त समझी वंजो ठीक है रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबानी वालेकुम अस्सलाम अदी फिलहाल तो यही आए बुधो था सो तव्हां भा जरूर लगाए जो वाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर वाइट एश ब्यूटी क्रीम नथा आणो त वाइट एश जी लवली क्रीम त लाज़मी लगाए जो ठीक आहे जी तव्हां बि लवली लवली थी वञो और गोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम ॾिनो बंबरो है हिते प्रोग्राम जी ऐं अव्हां जी कहिड़ी तारीफ़ करियां ॿई लाजवाब हो अला ॿुधायो

0: इट्स 2 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: मंशात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी जो जांच दौरान तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम. अदालती अहाते में पिंकी जो दाहूं जांच दौरान दाबा विझी कूड़ा बयान वठण जो इल्ज़ाम. पिंकी जज आरो बयान डिनो तो सब कुछ अगुणो मुड़स कराए रो है. मुख्य 22 डी अग खयो वो मखसूस बयान लाए तशद्दुद जो निशानो बनाया वो.
4: IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया. FBI जो टैक्स हदफ 15,260 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी. 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल. नए माली साल जे बजट में लेवी ज़रिए बि आवाम खां 1727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल.
3: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिसरी वफ़द जी मुलाक़ात. ॿ तरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ारत

0: विच में सहकार वधाइण ते इत्तेफाक। वासन नकवी चयो त मिस्री वफद जो दौरो बतरफी सहकार जा नवा दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।
1: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजी रिना मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे।
0: पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत में थियल आईसीसी मीटिंग में शिरकत की हुकूमत की मंजूरी से मजदूत कर छो। मोहसिन नकवी नई दिल्ली में थियल गडजाणी की दावत मिलने की तस्दीक कदे वजीर आजम इजाजत डिनी तो गडजाणी में शिरकत लाए भारत वेंदुस।
1: कंडियारो में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट की मुबैना लताड़ खिलाफ़ तालीमी तनक़ीदी फोरम के सद से एहतजाज। मुजाहरीन पारा हाईकोर्ट के गडियल चटाभेटी इम्तिहान का नतीजा मुअत्तल करने वाले फैसले की आज हाँ करप्ट अमलदार के हटाए एसपी एससी के खुदमुख्तियार इदारो बनाने का मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: This program is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
7: हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
8: कोई

माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छी वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो बिल्कुल जी, कौन सी बात है जो आपको इस्तेमाल करने से रोक रही है, बताएं जरा मुझे। बुधाए वजू मुखे खबर पवे मुखे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स शामिल हैं और साथ साथ सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है ये आपकी स्किन को वाइट कर देती है। इस्तेमाल करें और जदीद अज़ा से जो है ना ये तैयार की गई है और इसके अलावा रात भर अगर आप इस्तेमाल करते हैं रात भर आपके चेहरे पर लगी रहती है तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपकी जल जो है वो चमकदार हो जाती है, डार्क सर्कल्स वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे ऐसे मसाइल चल रहे हैं जिनका आप खात्मा चाहते हैं तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, चमकदार हो जाती है, जल्द की साख जो है ना वो बेहतर हो जाती है और इसके अलावा आपकी स्किन खूबसूरत नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फार्मूला जैसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं ना तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और जनाब उसके अलावा एक और मजे की बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। और जो मुझे मजे की बात लगती है वो ये कि भाई ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना ये ऑल स्किन टाइप वाले ही आप इस्तेमाल किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो या फिर ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो तो हर स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। और जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप के लिए वही प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑल स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे इजीली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है फर्स्ट कले नहीं मिल रहे तो उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03-1575-9505 03-1575-9595। ये नंबर जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर परचेज कीजिए टी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड टी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखा करिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ बुधायो जरा तव्हांजो दुश्मन त न रखंदा न करे तव्हां खे पाण खे रखणो आहे इहो ख़्याल, ऐं अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्याल न रखंदा न त तव्हांजी जेका उमिरि आहे न उहा अञा वॾी लॻंदी, तव्हां उमिरि खां इलाही वॾा लॻंदा जेके माण्हू पंहिंजो ख़्याल न आहे रखंदा। सो पंहिंजो ख़्याल रखो बाबा, हमेशह ख़ूबसूरत ॾेखारी ॾे और हमेशह अपनी स्किन का अपना ख़्याल रखते रहें, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे आप क्या कह रहे हैं वहाँ जी। बिल्कुल, कॉमेंट्स भी हैं आपके पैनल पर, मैसेज भी हैं, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे।

तो कुछ आपके मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जरा आप लोगों की कॉल्स की जाने बात है, ठीक है। और ये हमारे साथ मुझे मैसेज मिला है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी लुबी हमें सुन रही है, लुबड़ी को वेलकम करती हूँ। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर अरीबा, कहती हैं प्यारी आपी जान जवाब है नो ओवर स्मार्ट में, और मेरी दिलबर दोस्त भाभी इरम, हम दोनों बचपन से नॉर्मल है। अच्छा तो क्या वो एब नॉर्मल होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं, क्या मतलब वो नॉर्मल नहीं होते? अरे भाई हाँ, वो सभी नॉर्मल होते हैं। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इनम कहती है मेरी दोस्त ये आपको डेडिकेट जाता है गाना, मैंने बिल्कुल ही आपका गाना जो है ना वो सर्च किया तो मुझे यूट्यूब साहब ने बोला कि ये गाना हमारे पास नहीं है, या तो आप गाने का कोई मिस्टा मुझे लिखकर सेंड करें, जिस वजह से ये आपकी जो लाइन है ना ये यूट्यूब साहब को जरा पसंद नहीं आई, तो आप जरा गाने का टाइटल लिख के भेजा करें जिससे मुझे गाना ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्राम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कहते सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल हई रहमान मुगल रोज मुखावेसरी बने तो मां कोशिश कदम हलाईंदम तवाजो गानो, और गोट हाजी गुलाम खास के लिए झंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए ससगर मौजूद आए झंडो मरी वारो भाई तव गोट मोहम्मद तैयब थे बुक हाँ बोला थे बू कि तवाजो शो इस्तेमाल करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल आहे कोन इहो तव्हां मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, और जरा मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रही है नहीं मिल रही है, और उसके अलावा नंबर जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर आप रابطہ किया करें। यहाँ पर प्रेमचंद भाई हमारे साथ है, प्रेमचंद भाई कहते हैं मुझे फायजा अली का गाना सुनाइएगा, फायजा अली जो गानो बिल्कुल तां की बुदराइंदा सी, दर्दे दिल कहती है कि हाय ना ना मैं ना मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं बनने की कोशिश करती हूँ, एक बार किया था उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सबक मिले बने नन निदड़ी तवा ढाढा भला आयो माशाल्लाह। और उनका अलावा ये वीरू मल मेघवार भाई लिखते हैं सिद्रा सिस्टर हमें भी स्मार्ट होना है, और साबुन लगाएं या क्रीम लगाएं आप ही बता दें हमें भाई जान, तमाम बई चीजों लगायो हिकड़ी चीज न लगाए ना कयो, तां साबुन भी लगायो तां क्रीम भी लगायो, छो त बई चीजों अलग अलग आए ऐं बई चीजों तव्हां जी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि, सो जेकी चीजूं तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहिनि उहे सभु लगायो, ठीकु आहे, तव्हां साबुण बि लगायो तव्हां क्रीम बि लगायो भले तव्हां फेस वॉश बि लगायो, ऐं हा वाइट एज जी लवली क्रीम त लाज़मी लगाइजो, सम्झो था वाइट एज जी क्रीम जेका आहे तव्हां फेयरनेस क्रीम जेका आहे उहा तव्हां ॾींहं जो लगायो, जेका ब्यूटी क्रीम आहे तव्हां जो लगाए समझो कदें कदें तला पान ते खिलाईंदी आ मैडू गलाईंदी आ है, इतना कोई कैसे बोल सकता है लेकिन मैं बोलती हूँ। आबिद हमारे साथ है, फेरोज अली बिरोही भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। ऐसे तव गानो लिखो आए बिल्कुल तांजो गानो हलाइंदा सी पर हते एकड़ो मोट गानो आए जेको फायजा अली जी आवाज में गानो आए, तो सब फायजा अली जो गानो बुधंदा सी उन का पोए वरी तवाजो गानो भी हलाइंदा सी, सही आ सो ही गानो डेडिकेट वेंदो अलाए कंहिं फरमाइश कयो विसरी वियो पर जिन जिन फायजा जे गाने जी फरमाइश कई और इन सभिनी खे डेडिकेट आहे बिल्कुल सी प्रोग्राम तवाजो पंजो आहे वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तवा लगायो था खूबसूरत यो प्या आई खूबसूरती के वेलकम चोगो चो पया आई जेकी जेकी मानो खूबसूरत थन चाहन था वो सब इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वाइट एज प्रोडक्ट्स समझी वया।

किशोर भाई बस ॾिसंदा वञो ॾिसंदा वञो. अच्छा एसन छा थो चए, वैसे क्रीम जी दॿी ते छोकिरे जो फोटू छो न आहे हूंदो? कुझु टाइम पहिरियां मूं बि इहा ॻाल्हि सोची हुई, पर मूं थोरो ॾिठो त जेके काकनि वारियूं क्रीम हूंदा न ते काकनि जा फोटो हूंदा आहिनि. इट्स नॉट अ बिग डील, समझो था. तारिक खान कहते हैं डी स्किन क्रीम व्हाइट एश आउट स्टैंडिंग रिजल्ट देती है. बिल्कुल जी तारिक खान आपने सही कहा है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एज की प्रोडक्ट्स, जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलता जा रहा है. तो बाकी जो लोग लगाना चाहते हैं वो भी जल्दी से लगाए, ठीक है, कहीं देर ना हो जाए. और नजीर सिंधी कहते हैं हाय हेलो आरजे सिद्रा जी, आप कैसी हैं? सो इज वेरी वेरी नाइस. आई एम नजीर सिंधी फ्रॉम डहर की. चलिए जी, आपने सबको सलाम दिए हैं, सो वालेकुम अस्सलाम.

अच्छा वफा, मीर मुनव्वर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। सागर कतरी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वेलकम मीर, आप हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं जी, आपको वेलकम करते हैं इंडिया पंजाब से, आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं सागर। और दुर्गरम सहू हमारे साथ हैं, अगर मैं आपका नाम सही नहीं रीड कर रही हूं तो माजरत करते हैं। दुर्गरम सहू आपको वेलकम करते हैं जी, आप इंडिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर भाई कहते हैं कि हमने ख्याल नहीं रखा तो हम भी बड़े लगते हैं, यही बात है ना, मैं तो मतलब मुझे ता गाल के मनो सीरियस वठो चवन वठो मुझे तलाय कहते हो मुखे तलाय छुबार समझी करे मुझे गालन के हेड़े ओड़े करे सड़ींदा न कंदा क्यों अला मस्याणो मनो है।

अच्छा अच्छा मां त स्मार्ट आया न बस ओवर ओवर स्मार्ट थियण जी कोशिश न आया अच्छा मोहम्मद नीरन जकरानी भाई जेका बाबा सी मैं सब मौजूद है बहुत शुक्रिया ओके जी सो तमा से सगत मौजूद है संजो प्रोग्राम बुधंदा रंदा पूरी पूरी 3 बजे तक ठीक है ना 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है सो आप हमारे साथ मौजूद रहिए और जरा इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे आसानी तो आप परचेज करते जाइएगा और साथ ही साथ जो है ना डायल कीजिएगा 03-1579-0595 ये नंबर डायल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज करते जाइए टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक नहीं बल्कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो आप नहीं कहीं नहीं जाना बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ

तो आवाज भी सिंथी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंथी आवाज।

0: program is brought to you by
1: jade ma panjo khyal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe hi program kash foundation and canadian government je tarfa pesh kayo vayo
2: ye kudrati asli glow d skin
1: jade ma panjo khyal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe hi program kash foundation and canadian government je tarfa pesh kayo vayo
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन तई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: GFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

2595 ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम प्रोडक्ट्स. अगर आप ये थोड़ा सा जो है ना वो जरा पूछ करें अपने आसपास जाके करीबी जनरल स्टोर्स पर कि कहां कहां पर ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं मिल रहे तो आप नंबर के ऊपर रब्ता एक मरतबा जरूर कीजिएगा. और महर इरफान सियाल साहब का ये नंबर है, उनको बताइए कि भाई आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स और आप कहां से हमारा शो सुनते हैं आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो वो अवेलेबल करा देंगे. ठीक है, या फिर आपको गाइड कर देंगे कि आपने कहां से जाकर परचेज करने हैं. बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं तो आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको इजीली सारी बातें समझा देंगे. ठीक हो गया. और इसी के साथ साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और जब बनने की कोशिश की और आप फंस गए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में फिर उससे बाहर निकले हैं तो कैसे निकले हैं. क्योंकि ऐसा हो जाता है कई मरतबा कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं खास करके जब हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है ना वो बड़ा कैची टाइप होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि भाई इसे अगर हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं. लेकिन कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं. तो ओवर स्मार्ट पहली बात तो मत बना करें और दूसरी बात बने तो जरा सोच समझ कर बने. सही है.

आपने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सलाम टू माय स्वीट हार्ट मोम और सभी स्वीट सिस्टर्स को। टॉपिक ना नो कभी भी नहीं। वैसे फजीला की ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि फजीला जब भी मैसेज करती है तो उसमें अब एक ना दिन मेंशन करती है कि आज कौन सा दिन है। तो ये भी एक चीज है कि अगर समझ गए होंगे।

फजीला के बाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबना। कहती है कि कुछ चीजें सुकून देती हैं और तुम्हारा चेहरा और आवाज उसमें सबसे पहले आता है। फॉर यू सिडू जानी, थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी लुबना। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अच्छा युसरा, हमारा शो सुन रही है। युसरा ने सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है, सो युसरा आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। और ये बाजी हीवा रोगानो ता हलायो मरा ता केंजे लाए मरा न दोस्ता न प्यारा मुनवर होली जी आवाज में गानो आ। इमरान अली ब्रोई आप हमें सुन रहे हैं लाड़काना से। ओके मरा ता केंजे लाए मतलब आज तो सेट गानो पर लाए सुख न गाने ते खिला ही दिया। और नखा अलावा रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। यो मत आगे सुबाने बुदाई नाम ठीक है। और गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबी बोला थेबू कहते हैं वाइट एस जी लवली क्रीम शहर में आंदो आहे इस्तेमाल कया पर रिजल्ट मिले तो पोए तवा के बुदाया। चलो चलो ठीक है ठीक है, असा इंतजार कदासी बाबा ते वेठा आयो।

मोहम्मद गोला हमारे साथ मौजूद है जिला जेकब आबाद का तमाम मोहब्बतों प्रोग्राम उदू पया और सबा खान हमारे साथ है। सबा खान वालेकुम अस्सलाम। एसन जादू जी हाणे ये नचो वरी ते जिन अची वेंदो माण्हुनि खे अगर टे चार ॾींहं सुकून हूंदो आहे न प्रोग्राम में पोइ वरी हिकु ॿिनि खे थोरो इंजन अची वेंदो आहे पोइ वरी थोरो माहौल कराओ करण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर बसि छा था चई सघूं।

अच्छा ये हमारे साथ ज्वेलरी का खालिक लाशारी कहते अदी ज्वेलरी में क्रीम न पयो मिले चलो ज्वेलरी में असा तवा जला जल्दी अवेलेबल कराए वठंदासी पर भा तवा एकडो कम कजो तवा के जो नंबर बुधाए थी ना हाने उन नंबर ते तवा एक दफो राप्तो कजो उनन के चेजो त ज्वेलरी में जका ना क्रीम नथी मिले त हु जी अवेलेबल करा उनन के चो त असा रेडियो बुधना ता जो प्रोग्राम बुधनायो वाइट एस की क्रीम एंड डी स्किन की क्रीम असा जे ज्वेलरी गोठ में भी अवेलेबल करायो सही आ तो ता डायल करना 03-15-799-0595 ही नंबर तव्हां डायल कंदा ने नंबर ते तव्हां राबतो करण खां पोइ पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था इन खां पोइ

बिल्कुल जी, असां कल्ह बि होशियार हुआसीं, असां अॼु बि होशियार आहियूं, इंशाल्लाह सुभाणे बि होशियार हूंदासीं. हक़ीक़त आहे. हुन खां अलावा आदिल बहुत शुक्रिया. और स्मार्टू गोपांग बि हमारे साथ मौजूद आहिनि जी, वेलकम वेलकम. और हुन खां अलावा हिदायतुल्लाह, तव्हां जूं बि मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पियो असांजो. ऐं हीउ हिकिड़ो सॉन्ग लॻायो अथमि प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक आहे, सम्झो था. निदा कहती है, जिया कहां घूमे इतने टाइम से, वो बोलो कभी यहां भी चक्कर लगाओ. वैसे जिया मसरूफ आ लाइक थे.

0: ¡Nato, Dad! ¡Por qué todos estén teniendo!
1: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको भी ले डूबेंगे। मंशा केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिनके जो साफी जे सवाल ते जवाब। मंशा केस में अदालती पेशी वक्त पिनके जो दाहूं मनपसंद बयान वठण जे लाइ पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल और पिनके चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सभु कुझु अॻूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि। जंहिं फ्लिप मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे। अॻूणे मुड़ुस 3 महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निकाह रजिस्टर थियल न हो।

कन्यारों में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट की मुबैना लताल खिलाफ़ तालीमी तनकीदी फोरम के सर ते एहतजाज मुजाहरीन पारा हाईकोर्ट के गडल चटाभेटी इम्तिहान जहाँ नतीजा मुअतल करण वाले फैसले के आज करप्ट अमलदार के हटाए एस पी एस सी के खुदमुख्तियार इदारों बढ़ाने का मुतालबो।

0: देर शाम उजण माइनर जे आबादगर जो पानीपुर खिलाफ़ धरणो आबादगर पारा लिंक रोड ते तारण खे पहाड़ी धरणो हयां वियो। आबादगर चयो त उजण माइनर में केतरनि ई सालनि खां पाणीअ जी फरहामी बंदि आहे, ज़मीनूं बंजर थी रहियूं आहिनि, पाणी पहुचाए मसइलो हल कयो वञे।
1: ठिकराट हुजे ॻोठ मुबारकपुर वासी चार परे त बलोचिस्तान माघवा वारसन जो संदन बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज ॿुधाइन मूजिबि नौजवान साहब अली, सिराज अली, ज़मीर ख़ान ऐं मुराद अली खे नौशकी मां अगवा कयो वियो आहे। चइनि मुगमिन खे बाज़ियाब कराए गणती ख़तम कई वञे।
0: हाजाणा वासी नीगर गुम वारसन पारा अगवा जो शक ज़ाहिर। वारसन मूजिब नीगर नईम पुट शाह मुराद हाजाणो ॿ ॾींहनि खां पुरसा नमूने गुम थी वियो आहे। नीगर कराची वञण लाइ घरां निकितो, मोबाइल नंबर बि बंदि आहे। शक आहे त नीगर खे अगवा कयो वियो आहे, खेसि बिना देर बाज़ियाब कराए वञे।
1: घरों में ॻोठाणन जो बासर जी ज़्यादत ऐं लंघ ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठ अरब जा
2: परफॉर्मेंस में काम गर्मी हो ज़्यादा तो ना कूलिंग में दाम।
3: हम इसी कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं।
0: मीरपुर मातिलो बरसा शेख दुरन में संगावती तकरार तां झेड़ो, अठ जणा जख्मी। गोड वागणी में जेड़े दौरान लठियूं ऐं सुरटा लॻण सां ॿिन्ही दौरनि जा अठ जणा जख़्मी थिया।
1: बंग्लादेश ऐं पाकिस्तान में ॿी टेस्ट मैच जो पहिरियों ॾींहुं बंग्लादेश जी बैटिंग जारी। क़ौमी बॉलर्स बंग्लादेश जूं अहम विकेट्स वठण में कामयाब।
4: सोलर ऐं बैटरी
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: तहजीब और सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
7: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ़ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं फिज़िक्स, रियाज़ी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक़ शागिर्दियाणे लाइ स्कॉलरशिप्स भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घटि 50% मार्कूं इंटरमीडिएट लाज़मी। उमिरि जी हद 35 साल। आख़िरी तारीख़ 20 मई 2026 आहे। ऑनलाइन अप्लाई करियो www.apy.bnbwu.edu.pk।
9: क्या देख रहे हो?
10: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
9: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
11: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
12: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, NICVD रोड सखर, हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी, DHMS, RHMP इस्लामाबाद, जोड़न, संदन जो सूर, कुंदरग जो सूर, कंघे जो सूर, हडन जो भरण, अध मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जो सूर, खारिश, बारन में कद जो न वधण, मोटापो, इन खां अलावा पित्ते, गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे बजे ताई। एड्रेस सखर होम्योपैथी क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे आचार से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त। रश का बचन नंबर वठन लाए 0327-84-60-746।
4: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे खेल महासे और बेजानपन।
13: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
14: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
15: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
16: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
17: 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
13: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
15: तो भाई साहब क्या समझे।
14: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
18: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।
19: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
20: It's 3:15 PM.
21: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
22: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
23: GAFM 88
22: नेटवर्क,
24: सिंध की आवाज।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-94

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब ज़ोरीअ खुलियल तकरारी केनालनि मां पाणीअ जी खणत वधाए छॾी। पंजाब सीजे ऐं तोसा पंज लिंक केनालनि मां 10,000 क्यूसिक पाणी खणण लॻो। शदीद पाणीअ जी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में पाणीअ जो बहरान वधीक संगीन थी वियो। बिना इजाज़त पंजाब पारां खुलियल तकरारी लिंक केनालनि जो कंहिं बि नोटिस न वरितो। सिंध जे आबादगारनि में गणती जी लह छायल, सूबे में फसलनि जी पोखी मुतासिर थियण जो ख़दशो ज़ाहिर।

0: मैंने 2-3 दिन में लोगों के नाजायज पर्चे, मेरी पूरी फैमिली बटाल दी है, मेरा बटाल दिए, लात नाजायज पर्चे 2-3 दिन में दिए लोगों के पर्चे।
1: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको ही ले डूबेंगे। मनशात केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिनकी जो साफी जे सवाल ते जवाब। मनशात केस में अदालती पेशी वक्त पिनकी जो दाहूं मनपसंद बयान वठण जे लाइ पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल और पिनकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सभु कुझु अॻूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे। 22 पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो आहे। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई।

एफ बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11% रखी छॾिया। एफ बी आर जो टैक्स हदफ़ 15,260 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात में तरफ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे घर वज़ारतुनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नक़वी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो बि तरफ़े सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो। सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर सहजील इनाम मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत 4 ॼणा क़त्ल 4 ॼणा ज़ख़्मी। काज़ी अहमद में खोखर ऐं कंबो बिरादरी जी बिंदुरियुनि में मसवाड़ वारी जाइ तां जेड़ो मंज़ूर कंबो क़त्ल, ॿिनि औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी 1 ॼणो क़त्ल। ॻोठ ख़ुशमोहम्मद पहर में ॻोठाणो रफ़ीक पहर क़त्ल थी वियो। कानपुर वेझो घर मां चोरीअ दौरान मज़ामत हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर ते आणी समात मरियम ख़ातून क़त्ल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी 1 ॼणे खे क़त्ल करे छॾियो। ॻोठ ख़ुशमोहम्मद पहर में रफ़ीक पहर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़त्ल कयो वियो।

0: दिलि में अचा में उजण महीने जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो आबादगारनि पारां लिंक रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हयो वियो। आबादगारनि चयो आहे त उजण महीने में केतिरनि ई सालनि खां पाणीअ जी फराहमी बंदि आहे, ज़मीनूं बंजर थी रहियूं आहिनि, पाणी पहुचाए मसालो हल कयो वञे। ठिकराठो जे ॻोठ मुबारकपुर वासी चार पोहर त बलोचिस्तान मां हुआ वारसनि जो संदन बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज। मुज़ाहिरनि मूजिबि नौजवान साहब अली, सिराज अली, ज़मीर ख़ान ऐं मुराद अली खे नौशकी मां अॻवा कयो वियो आहे। चइनी मुगमिन खे बाज़ियाब करे गणती ख़तम कई वञे। फैज़गंज भरिसां ॻोठ कोड़की हाजाणा वासी नींगर गुम वारसनि पारां अॻवा जो शक ज़ाहिर। वारसनि मूजिबि नींगर नईम पुटु शाहबराज हाजाणो ॿ ॾींहनि खां पुरसार नमूने गुम थी वियो आहे। नींगर कराची वञण जे लाइ घरां निकितो हो, संदसि मोबाइल फोन बि बंदि आहे। शक आहे त नींगर खे अॻवा कयो वियो आहे, खेसि बिना देर बाज़ियाब करायो वञे। दड़ो में ॻोठाणनि जो बासर जी ज़्यादतियुनि ऐं लंघ ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ अरब जावरी वासियुनि जो बासर ते लंघ ते कब्ज़ो करे ज़मीन में शामिल करण जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरनि चयो आहे त लंघ बंदि हुअण सबबि सॼे ॻोठ खे परेशानी थी रही आहे। बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे लंघ खोलायो वञे। नवाबशाह में सांगर रोड ते सठ में इलाके वठे मालपीड़ीअ में जेड़ो हिकु ॼणो ज़ख़्मी, लठनि जो इस्तेमाल, फायरिंग ते वापारियुनि में भाॼ, पुलिस सूरतहाल तेज़ाब थो आंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब खोलियल तकरारी कैनाल्स मां पाणी खणत वधाए छॾी। पंजाब सी जे ऐं तोनसा पंजलंद लिंक कैनाल्स मां 10,000 क्यूसिक पाणी खणण लॻो। शदीद पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में पाणीअ जो बुहरान वधीक संगीन थी वियो। बिना इजाज़त पंजाब पारां खोलियल तकरारी लिंक कैनाल्स जो कंहिं बि नोटिस न वरितो। सिंध जे आबादगारनि में गणतीअ

हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको ले डूबेंगे। मंशियात केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिन किया जो सहाफी जैसे सवाल थे, दिलचस्प जवाब। मंशियात केस में अदालती पेशी वक्त पिन किए जो दाहूं मनपसंद बयान वठन लाए पुलिस से तशद्दुद करने जो इल्ज़ाम। अनमोल और पिनकी चयो तो बेगुनाह आया कुछ भी ना है कयो, सब कुछ अगुणो मुड़स कराए रहो है। 22 दिन पहरी लाहौर में खयो वयो, 15 दिन रखियो वयो, 5 दिन पहरी हते आंदो वयो। केस भी कूड़ा दाखिल किया वे आयन जै फ्लैट में गिरफ्तारी देखारी वही मुझो ना है। अगुणे मुड़स 3 महीना पहरी तलाक दिनी निकाह रजिस्टर थियल न हो।

सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत चार ॼणा क़तल, चार ज़ख़्मी। काज़ी अहमद में खोखर ऐं कंबो बिरादरी जे ॿिनि दिनि में मसवाड़ वारी जाइ तां झेड़ो थियो। मंज़ूर कंबो क़तल थी वियो, ॿिनि औरतुनि समेत चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। दोदापुर बरसाण ॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। ॻोठु ख़ुश मोहम्मद पांवर में ॻोठाणो रफ़ीक पांवर क़तल थी वियो। खानपुर वेझो ॻोठ घर मां चोरी दौरान मज़ामत हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर धियाणी मसमात मरियम ख़ातून क़तल थी वई। दोदापुर भरसां अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। ॻोठु ख़ुश मोहम्मद पांवर में रफ़ीक पांवर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो वियो।

कराची जी अदालत बरसात दौरान करंट लगन सबब फौत थियल शहरी वारे केस जो फैसलो बुधाए छो कि इलेक्ट्रिक ते 1,35,00,000 रुपया डंड मुकरर। अदालत चयो तो बिजली जी निज़ाम के महफूज रखण केई जी जिम्मेवारी आहे। अवामी हंद ते मौजूद बिजली जे थंभे में करंट गफलत आहे। शाह में उजण माइनर जे आबादगारन जो पाणी कोट खिलाफ़ धरणो। आबादगारन पारां लिंक रोड ते टायरन खे बाह ॾेई धरणो हयो वियो। आबादगारन जो चवण हो त उजण माइनर में केतिरनि ई सालनि खां पाणीअ जी फरामी बंदि आहे। ज़मीनूं बंजर थी रहियूं आहिनि। पाणी पहुचाए मसलो हल कयो वञे।

खराटो जे गोठ मुबारक प्रवासी चार पोरित बलूचिस्तान मां अगवा वारसन जो संदन बाजा बिल एहतजाज मुजाहिन मूजिब नौजवान साहिब अली सिराज जमीर खान ए मुराद अली के नौशकी मां अगवा कयो वियो चैनी मुगुन के बाजियाब कराए गणती खत्म की वञे।

फैजगंज वेझो गोठ कोरकी हाजाणा वासी नींगर गुम वारसन पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। वारसन मूजिब नींगर नईम शाह पुट मुराद हाजाणो ॿ ॾींहं खां पुरसरार नमूने गुम थी वियो। नींगर कराची वञण लाइ घरां निकितो हो, संदसि मोबाइल फोन नंबर बि बंदि पयल आहे। शिकायत नींगर खे अगवा कयो वियो आहे, खेसि बिना देर बाज़ियाबु करायो वञे।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: अम्मा, हेडिसम का छा मिलियो?
4: छा मिलियो पुत्र?

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: हर चप्पा हर गोशा
8: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
7: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: प्लस में कोशिश कियो त जेको आहे न चेक या त पेमेंट अगरि ॾियो त नेट कैश ॾेई छॾियो पर एस पर कॉन्ट्रेक्ट अल्टरेशन न हुजे ठीकु आहे ऐं जेको आहे न कोई बि अगरि बैंक में वञे थो सभु खां पहिरियों तसदीक कराए त छा इहे जेको मूंखे के पंहिंजे चेक मिलियो आहे उहो चेक फेक त नाहे उन में छा इहो अकाउंट सीज़ त नाहे छा इहे अकाउंट जेको आहे न जीअं हाणे ज़ुबैर हिकिड़ो सुवालु कयो छा अकाउंट उहो फेक त नाहे फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज मूंखे चेक त न ॾिनो आहे छो इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि इहे तव्हांखे नज़र में रखणियूं पवंदियूं कॉन्ट्रेक्ट रिटन खां अलावा ऐं प्लस में हिकिड़ी एडिशन ॻाल्हि कयां रिटन में बि अवेलेबल हुजे ऐं प्लस में शायदि ज़रूरु हुन जा अवेलेबल हुजनि त इन फ्यूचर छा थी वञे तव्हांजी लिटिगेशन जो टाइम बची पवंदो पंहिंजो केस पाण ई लूज़ करे वेंदो क्रिमिनल में पनिशमेंट दी पनिशमेंट मिलंदी अमाउंट त न मिलंदो सिविल में छा थींदो तव्हांखे चांसिस आहिनि त तव्हांजो अमाउंट रिकवर थींदो या मामला सेटलमेंट ॾे हलिया वेंदा पर हूंदा बज़ाहिर ई त नंढा लॻंदा आहिनि हिकु लाइन जा लॻंदा आहिनि पर हुनजी जेका डेप्थ ऐं गहिराई में वेंदासीं त उहे ॾाढा वॾा हूंदा
1: पर तव्हां माशाल्लाह अहिड़े सुठे तरीक़े सां असांखे गहिराई सां
0: इहो जेको आर्ट आहे उहो लेक्चर ॾियण सां असां ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं त असां सिर्फ़ु इहो न सम्झायूं सम्झंदा आहियूं त सिर्फ़ु पढ़ाइणो आहे त इहो बि हूंदो आहे त अगरि 100 ॿार वेठो आहे 100 ॿारनि जो अलॻि अलॻि दिमाग़ कमु कंदो त उन नज़रिए सां अलॻि अलॻि तरीक़े सां उन टॉपिक खे असां ॾिसंदा आहियूं त काॾो बि सुवाल थ्रो आउट काॾो बि सुवाल थ्रो थी सघे थो ऐं कोई बि टॉपिक बाबर असां खां पुछी सघे थो
1: छो
0: की सुवाल जे अंदरि सुवाल
1: हिकिड़ो
0: बुकिश लैंग्वेज ते बि इंसान केतिरो ॻाल्हाईंदो पर जेकी प्रैक्टिकल लाइफ आहे इलाही वास्ट आहे इलाही वॾी
1: आहे छो की
0: प्रैक्टिकल त थींदो रहे थो एग्ज़ाम्पल्स असां वटि सेट थियल दैट इज़ द रीज़न की मां जॾहिं बि ईंदो आहियां त मां सां मूंखे इहा हूंदी आहे त बाबर काॾो न कहिड़ो न कहिड़ो सुवाल
1: तव्हांखे इहा ई सजेशन ॾिनी त चेक ॾींदड़ ॾियण वक़्तु एहतियात लाज़मी कयो कॉन्ट्रेक्ट ज़रूरु कयो ईअं चेक कंहिंखे ॾींदव उहा डिसऑनेस्टी अगरि प्रूफ थी पई वञे त 3 सालनि ताईं जेल बि थी
0: सघे
1: मिसयूज़ थी सघे थो इन जे लाइ कोशिशि कयो त चेक ॾियण खां पहिरियां इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु अमल
0: कयो
1: बेसिक इनग्रीडियंट्स ते ज़रूरु अमल कयो त जीअं उहो मिसयूज़ न थिए सो वरी कंहिं नई टॉपिक सां गॾु अॻिले प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त
0: वॾी महिरबानी
1: इन्हनि सां एडवोकेट साहब सां तव्हांखे जेको आहे त को लीगल कंसल्टेशन घुरिजे या असांजे प्रोग्राम सां अव्हांखे को एडवर्टाइज़मेंट या प्रोग्राम सां रेलिवेंट तव्हांजो को फीडबैक हुजे उन जे लाइ असांजो नंबर आहे 03-000-11-34-88 ऐं शहबाज़ साहब अगरि पंहिंजो नंबर ॾियणु चाहिनि त लिसनर्स लाइ फ़ाइदो थींदो
0: 03-08-12-44-306
1: ठीकु आहे त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा सदाई गॾु अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर
0: थैंक यू वेरी मच

0: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको ले डूबेंगे। मलेशियात केस में गिरफ्तार कुकिंग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो साफी जो सवाल दे जवाब। मलेशियात केस में अदालती पेशी वक्त पिंकी जो दाहूं मनपसंद बयान वठण लाए पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल उर्फ पिंकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुछ भी ना है कयो, सब कुछ अगोड़ो मुड़स कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरियों लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि। जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे। अॻोणे मुड़ ते महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, का रजिस्टर्ड थियल न हो।
1: I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
2: the president of China agrees with you on that.
1: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
3: ते फैसला है तो हमलो पाकिस्तान जे कुछ सुठन मानन जी दरख्वास्त रोको। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टीवी के डिनल इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि। उन्हनि चयो असां मुआदो कराए सघूं था, अवां रुकजी सघो था। रोज़ानी डील करण बाद 2 ॾींहं लॻंदो आहे त ईरान ॻाल्हियूं ई न आहिनि कयूं। उन्हनि सां कुझु मसलो आहे, हू चरिया आहिनि। चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वारो मौक़िफ़ रखे थो।

वफाकी घर वज़ीर मोहसिन नकवी ईरान जे दौरे ते तहरान पहुची वियो। वफाकी घर वज़ीर मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। ज़रियनि जो चवणु आहे त मोहसिन नकवी ख़िते जी सूरतहाल ते ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल करण सां गॾु जंग जे ख़ात्मे लाइ जारी सारसी कोशिशुनि खां बि आगाह कंदो। ईरान पारां अपनाए हुर्मुज़ जी बहाली लाइ जल्द ज़ाब्ता जारी करण जो ऐलान। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अपनाए हुर्मुज़ बाबति नवां ज़ाब्ता तयार करे छॾिया आहिनि जिन खे जल्द लागू कयो वेंदो। गॾियल क़ौमनि में मुक़रर ईरानी सफ़ीर अपनाए हुर्मुज़ जी मौजूदा सूरतहाल जो ज़िमेवार ईरान ते हमिलो कंदड़नि खे क़रार ॾेई छॾियो।

0: फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहादियों से मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वारे वफाकी वजीर आजम नजीर तारण चया है हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम कर पाबंद आन असाज गडियल हुकूमत है, इतिहादियों की मुशावरत का सिवाय आईनी तरमीम किया करे सके थी। वजीर आजम असाजो ए सदर भी वही इतिहाद जमात जो है, तरमीम से इतिहादियों के सिग्नल बाद ही मुशावरत के बधाया वो।
1: सिंध में पानी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोल तकरारी कैनाल्स में पानी खर्च बढ़ाए छी। पंजाब सीजे ए तोनसा पंजनंद लिंक कैनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खड़न लगो। शदीद पानी खोट के मोह डींदड़ सिंध में पानी जो बहरान संगीन थी वो। बिना इजाजत पंजाब पारा खोल तकरारी लिंक कैनाल्स जो कें भी नोटिस न वरतो। सिंध के आबादगार में गणती की लहर छयल, सूबे में फसल की पोखी सख्त मुतासर थियण जो खदशो जाहिर।
0: IMF बिजली ए गैस महंगी करण समेत नए माली साल की बजट लाए 11 शर्त रखी छा। FBR जो टैक्स हदफ 15,260 अरब रुपया रखने की तजवीज दई छी। 215 अरब रुपये जहां नवा टैक्स भी शामिल। नए माली साल की बजट में लेवी जरिए भी अवाम का 1,727 अरब उगरण जो मनसूबो भी शामिल।
1: सिंध हुकूमत जो बारन की बचत लाए लगायल स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने ऐलान। मार्केटू मामूल मूजिब खुल होंद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बिरादरी वो रिलीफ दिनो है। दुखिन मौशी हालतुन में भी अवाम ए कारोबारी तबके की मुफादन जो तहफुज किया है।

0: सिंध में मुख़्तलिफ़ टकरारनि दौरान औरत समेत चार ॼणा क़तल, चार ॼणा ज़ख़्मी। गाज़ी अहमद में खोखर ऐं कंबो बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में मसवाड़ वारी जाइ तां छेड़ो, मंज़ूर कंबो क़तल, ॿिनि औरतुनि समेत चार ॼणा ज़ख़्मी। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। घोट ख़ुश मोहम्मद पंवर में घोटाणो रफ़ीक पंवर क़तल थी वियो। कानपुर वेझो घर मां चोरी दौरान मुज़ाहमत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर ध्याणी वसमात मरियम खातून क़तल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। घोट ख़ुश मोहम्मद पंवर में रफ़ीक पंवर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो वियो।
1: कराचीअ जी अदालत बरसाति दौरान करंट लॻण सबबि फौत थियल शहरी वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो कि इलेक्ट्रिक ते 1,35,00,000 रुपया ॾंड लागू। अदालत चयो त बिजली जे निज़ाम खे महफ़ूज़ रखण खे इलेक्ट्रिक जी ज़िमेवारी आहे, अवामी हंधनि ते मौजूद बिजली जे थंभे में करंट गफ़लत आहे।
0: ईद उल अज़हा करे थींदी, फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। ज़ुल्हज जो चंड ॾिसण लाइ मर्कज़ी कमेटी जो इजलास सुभाणे कराची में तलब। कराची जे मौसमियात खाते में थींदड़ इजलास जी सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद कंदो। सुपारको मूजिब सुभाणे ज़ुल्हज जे चंड जा इम्कान रोशन आहिनि। ईद उल अज़हा 27 मई ते थी सघे थी।
1: टिकराटो जे ॻोठ मुबारकपुर वासी चार पोरेत बलोचिस्तान मां अगवा वारसनि जो संदन बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। मुज़ाहिरीन मूजिब नौजवान साहिब सिराज ज़मीर ख़ान ऐं मुराद अलीअ खे नौशकीअ मां अगवा कयो वियो। चइनी मुगविन खे बाज़ियाब करे ॻणती ख़तम कई वञे।
0: फेसगंज भरिसां ॻोठ कोरकी हाजाणा वासी नींगर गुम, हारिसन पारां अगवा जो शख़्स ज़ाहिर। वारिसन मूजिब नींगर नईम पुट शाह मुराद हाजाणो ॿ ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम थी वियो आहे। नींगर कराची वञण लाइ घरां निकितो हो, संदसि मोबाइल फोन नंबर बि बंदि आहे। शक आहे त नींगर खे अगवा कयो वियो आहे। खेसि बिना देर बाज़ियाब करायो वञे।

हैदराबाद में मुख्तलिफ कार्टन में भर्ती थियल एक का चार ग्रेड के मुलाजमन जो टिन सालन का पगारू न मिलने खिलाफ एहतजाज मुजाहिन जो पगारू जारी करण जो मुतालबो मुजाहिन चयो तो नौकरी कंदे टे साल थी विया अया तई पगारू जारी नायन थियूं हुकूमत मसलो हल करे पगारू जारी करे

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हेलो वर्णा, खबर ना है, मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शौं दी आया।
1: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: बच्चे ने तताओ ने के रोज अंडा खा रहे जो मंझन जी मानी में सूफे दी जो तजियो स्कूल में मुहागुर थकेला थकेला ना हो जे
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही हां पहरो भेरो मा थी रही आही ना मुझो भी यो ही हाल हो।
5: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा
6: हो

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नजर न अची रहा आहिनि। पार्लियामेंट मौजूद आहे, इतिहादनि सां मुशावरत बाद ई कुझु थी सघे थो। कानून वारे फाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त हुकूमत अदलिया ऐं एग्ज़ीक्यूटिव आइन तहत कम करण जूं पाबंद आहिनि। असांजी गॾियल हुकूमत आहे, इतिहादनि जी मुशावरत खां सवाइ आइनी तरमीम कीअं करे सघे थी। वज़ीर आज़म असांजो ऐं सदर बि वॾी इतिहाद जमात जो आहे। तरमीम ते इतिहादनि जी सिग्नल बाद ई मुशावरत खे अॻिते वधायो वेंदो।

0: मवेशी आर्ट केस में गिरफ्तार कुकेन क्वीन एंड मोल उत्पिन की कराची है बलीर की अदालत में पेश। कराची सेंट्रल के अदालत पिंकी के 7 दिन के रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। बलीर की अदालत मवेशी आर्ट केस में पिंकी की रिमांड वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। जेल मोकलण जो हुक्म 14 दिन अंदर केस जो चालान पेश करने की हिदायत। पुलिस जो अदालती फैसलो चैलेंज करने जो ऐलान। पुलिस पिंकी के बिन्हीं अदालतन में हथ कड़ी हणी सख्त सिक्योरिटी में पेश कयो।
1: डूबे हैं सनम अब सबको ले डूबेंगे। मंशियात केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो सहाफ़ी के सवाल से दिलचस्प जवाब। मंशियात केस में अदालती पेशी वक्त पिंकी जो दाहूं मनपसंद बयान वठण लाए पुलिस से तशद्दुद करने जो भी इल्ज़ाम। अनमोल उर्फ पिंकी चयो तो बेगुनाह आया कुछ भी ना कयो सब कुछ अगुनो मुड़स कराए रो है। 22 दिन पहरी लाहौर मां खंभियो वयो 15 दिन रखियो वयो 5 दिन पहरी हिते आंदो वयो है। केस भी कूड़ा दाखिल किया वया आहन जै फ्लैट मां गिरफ्तारी देखारी वई मुंजो ना है। अगुणे मुड़स 3 महीना पहरी तलाक दिनी हुई निकाह बे रजिस्टर थिल न हो।
2: वेरी नाइस ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु आर वेरी क्लोज टू इरान। आई डिडंट गो दैट फाइनल दे सेड कुड यू स्टॉप we're going to make a deal and we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal they that conversation, and that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually they're crazy, and you know what, because of that they cannot have a nuclear weapon. Because
3: the president of China agrees with you on that,
2: and he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
0: ईरान ते फैसला है तो हमलो पाकिस्तान जे कुछ सुठन माण्हुनि जी तरफ

0: वास्ते रोकियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टीवी के डि॒नल इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि। हुननि चयो असां मुआदो कराए सघूं था, अवां रुकजी सघो था। रोज़ानी डील करण बाद ॿिए ॾींहुं लॻंदो आहे त ईरान ॻाल्हियूं ई नाहिनि कयूं। हिननि सां कुझु मसइलो आहे, हू चरिया आहिनि। चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वारो मौक़िफ़ रखे थो।
1: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरान जे दौरे ते तहरान पहुची वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। ज़रियुनि जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी खे तेज़ी सूरतहाल ते ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल करण सां गॾु जंग जे ख़ात्मे लाइ जारी ट्रैकड़ी वारनि कोशिशुनि खां बि आगाह कंदो।
0: ईरान पारां अपनाए हुर्मुज़ जी बहाली लाइ जल्द ज़ाब्ता जारी करण जो ऐलान। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अपनाए हुर्मुज़ बाबति नवां ज़ाब्ता तयार करे छॾिया आहिनि, जिन खे जल्द लागू कयो वेंदो। गडि॒यल क़ौमनि में मुक़रर ईरानी सफ़ीर अपनाए हुर्मुज़ जी मौजूदा सूरतहाल जो ज़िमेवार ईरान ते हमिलो कंदड़नि खे क़रार ॾेई छॾियो।

0: सिंध में पानी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोलियल तकरारी कैनाल्स में पानी कणत वधाए छी। पंजाब सीजे तुनसा पंज नंद लिंक कैनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खणन लगो। शदीद पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में पानी जो बोहरान संगीन थी वो। बिना इजाजत पंजाब पारा खोलियल तकरारी लिंक कैनाल्स जो कें भी नोटिस न वरतो। सिंध के आबादगार में गणती की लहर छायल। सूबे में फसलन की पोखी मुतासिर थियण जो खदशो जाहिर।
1: बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। एफबीआर जो टैक्स अदा 15,260 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपयनि जा नवा टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब उगाइण जो मनसूबो बि शामिल।

सिंध हुकूमत जो बारन जी बचत लाए लगायल समर लॉकडाउन खत्म करने जो ऐलान मार्केटू मामूल मूजिब खुलल होंद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन है सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी अवाम के वो रिलीफ दिनों है। दुखियन मुआशी हालतुन में भी अवाम कारोबारी तबके की मुफादन को तहफुज़ किया है।

0: सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत चार ॼणा क़तल, चार ॼणा ज़ख़्मी। गाज़ी अहमद में खोखर ऐं कंपो बिरादरी जी ॿिनि दूरियुनि में वसवाड़ वारी जाइ तां जहिड़ो थियो। मंज़ूर कंपो क़तल, ॿिनि औरतुनि समेत चार ॼणा ज़ख़्मी। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। घोट ख़ुश मोहम्मद पवर में ॻोठाणो रफ़ीक पवर क़तल थी वियो। खानपुर वेझो घर मां चोरी दौरान मुज़ामत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर धाणी मुसमात मरियम खातून क़तल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। घोट ख़ुश मोहम्मद पवर में रफ़ीक पवर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो वियो।
1: कराचीअ जी अदालत बरसाति दौरान करंट लॻण सबबु फ़ौत थियल शहरी वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो कि इलेक्ट्रिक ते 1,35,00,000 रुपया ॾंढ लाॻू। अदालत चयो त बिजलीअ जे निज़ाम खे महफ़ूज़ रखण के इलेक्ट्रिक जी ज़िमेवारी आहे। अवामी हंध ते मौजूदु बिजली जे थंभे में करंट ग़फ़लत आहे।

ईद उल अज़हा करे थींदी, फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। ज़ुल्ह जो चंड ॾिसण लाइ मर्कज़ी कमेटी जो इजलास सुभाणे कराची में तलब। कराची जी मौसमियात खाते में थींदड़ इजलास जी सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कंदो। सुपारको मूजिब सुभाणे ज़ुल्ह जे चंड जा इम्कान रोशन आहिनि। ईद उल अज़हा 27 मई ते थी सघे थी।

फिरोजपुर में बुट्टा भंगवार खूनी टकराव जो जिद के जरिए निबेरो धुरियन से मजमूई तौर 2,37,00,000 रुपया लगाया वो खूनी टकराव जो जिरगो दड़ी सुंदराणी में आबिद खान सुंदराणी की सरपंची में थो मंगवार तौर से 4 खूनन जो 1,29,00,000 बुट्टा तौर से 2 खूनन जो 1,08,00,000 रुपया दंड मुकर्र मुस्तकबिल में अगराई से 2 करोड़ दंड की फतवा।

नेहड़ भरिसां कुझु महीना अॻु शहीद कयल टिन पुलिस अहलकारनि जे केस में हिकु जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस पारां मुक़ाबले बाद जवाबदार सदाम चांडियो खे गिरफ़्तार करण जी दावा। पुलिस चयो आहे त गिरफ़्तार जवाबदार वटां मक़तूल अहलकार इरफान चांडियो खां फुर कयल राइफल बि मिली आहे। पुलिस अहलकार इमामुद्दीन कोसो, इरफान चांडियो ऐं हफ़ीज़ महर खे गोलियूं हणी शहीद कयो वियो हो। केस में नामज़द जवाबदार सजण माछी मोहम्मद अली चांडियो, गुलबहार वहीद, मोहम्मद नवाज़ चांडियो फरार आहिनि।

हैदराबाद में मुख्तलिफ खातन में भर्ती थियल एक खां चार ग्रेड के मुलाजमन जो टिन सालन का पगार न मिलने खिलाफ एहतजाज मुजाहिरन जो पगार जारी करने जो मुतालबो अजा तई पगारू जारी ना थियूं हुकूमत मसलो हल कर पगारू जारी करे।

ऐं चटे जे इलाइक़े गुजे कराची क़ौमी शाहरा ते तेज़ रफ़्तार वीगो कल्टी वक़ार लोधी फ़ौत ज़फ़र सिद्दीकी ऐं मुबीन ज़ख़्मी लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नवीद

0: very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about five times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
1: the president of China agrees with you on that.
0: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
2: हमलो पाकिस्तान जे कुछ सुठन माण्हुनि जी दरख़्वास्त ते रोकियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख़्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि हुननि चयो असां मुआदो कराए सघूं था अवां रुकजी सघो था रोज़ानी डील करण बाद ॿिए ॾींहुं लॻंदो आहे त ईरान ॻाल्हियूं ई न आहिनि कयूं हुननि सां कुझु मसइलो आहे हू चरिया आहिनि चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वारो मौक़िफ़ रखे थो जी बहाली लाइ जल्द ज़ाब्ता जारी करण जो ऐलान ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अब्राहिम हुर्मुज़ बाबति नवां ज़ाब्ता तयार करे छॾिया आहिनि जिन खे जल्द लागू कयो वेंदो गॾियल क़ौमनि में मुक़रर ईरानी सफ़ीर अब्राहिम हुर्मुज़ जी मौजूदा सूरत हाल जो ज़िमेवार ईरान ते हमिलो कंदड़नि खे क़रार ॾेई छॾियो

फिलहाल 18वीं आईनी तरमीम जहां सा नजर न अची रहा है पार्लियामेंट मौजूद है इतिहादियन सा मुशावत बाद ही कुछ थी सके तो कानून वाले फाकी वजीर आजम नजीर तरड़ चयो आए ता हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम करण जो पाबंद आहिन असाजी गडियल हुकूमत है इतिहादियन जी मुशावरत का सिवाय आईनी तरमीम किए करे सके थी वजीर आजम असाजो ए सदर भी वडी इतिहाद जमात जो है तरमीम ते इतिहादियन जे सिग्नल बाद ही मुशावरत के बधायो वेंदो।

0: Assalamualaikum. जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जिला स्टूडियो में प्रोग्राम होम्योपैथिक जो राज सेहत जो राज होम्योपैथिक सान सान करे हाजिर खिदमत मावा जो पेंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगानी मुझो आवाज़ हवाओं के लहरन वसीले जिथे जिथे पहुंचे पे गोठन वाहन वस्तियन या कोई कमकार दौरान या कोई ड्राइविंग दौरान असें बुधी रो है उन्हें सभी बुधदड़न के मुँह तरफा सिक मोहब्बत भर सलाम कबूल पवे सामिन अवजा कड़ा हाल उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ असो खूब सारी दुआ अवज तो जिथे वजो शादाबाद जो सदाई खिलंदा मुस्कुराईद रहो आमीन या रब्बल आलमीन सकरन होम्योपैथिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक हाँ कें भी बीमारी का मायूस ना है थो इलाज डॉक्टर कंदो शफा अल्लाह की जात दी सकरन जो मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चर नवाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहब वापिस्तान डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसाले की पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन के इलाज के वन तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरों चेहरे की खारिश पुरड़ू बार में कद जो नधण मर्दन तड़ औरतन में वजन जो नधण इन सभी बीमार जो कामयाब इलाज के वन तो डॉक्टर साहब रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तीन सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेरापुर रोड नर्स बाईपास सकरन में मरीजन जो इलाज कंदा जुम्मो मोकल कंदा हर छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप किया सामिन पर हाँ जुम्मो मोकल कान्ने जुम्मे से सुबह जो 9 का मंझंद 12 वगे ते क्लिनिक खुलियल होंगी आई हर छंछर आचर से भी डॉक्टर साहब की क्लिनिक खुलियल होंगी इन वक्त जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है स्टेशन रोड सकरन में डॉक्टर साहब की क्लिनिक है हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक के नाले से डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 6 वगे तीन जी हाँ समीन डॉक्टर साहब इन वक्त इतने क्लिनिक से टाइम पेंजी जिका है वधाए छो है टाइमिंग के डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 6 वगे तीन स्टेशन रोड हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर साहब मौजूद हों सामिन ये डॉक्टर साहब जी दादे साहबजन की क्लिनिक है पुरानी आई पहले डॉक्टर साहब इतने हूँ इन वक्त भी डॉक्टर साहब पैं सागी पुरानी क्लिनिक के आबाद किया है उत डॉक्टर साहब सुबह जो 9 का शाम 6 वगे से उतने मौजूद मिल डॉक्टर साहब तरफ हलूँ था उन्होंने गाल बोल क्यों था कुछ मालूम बीमार के हवाले से वूँ था अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
1: वालेकुम अस्सलाम
0: डॉक्टर साहब कड़ा हाल नवाजा
1: अल्लाह जो शुक्र है
0: डॉक्टर साहब अजो को तवाजो डी कि गुजरो इन पेंजे नई क्लिनिक ते
1: हां बिल्कुल अजो को जो डी हो असा जो बेहतरीन हो शुक्र अल्लाह जो पर कुछ जका अस जो दोस्त हुआ जे रात प्रोग्राम बुधे हो तो हो तो बेचारा सही असा वट अची आ कुछ जका हुआ प्रोग्राम न बुधया तो हो सागी उनी एड्रेस ते असा वट पहुंची गया तो उन सबन के चयो सी समझायो सी रात असा प्रोग्राम ने भी बुधायो हो आई अवा कॉल असा की करे वठो हा पर जैसा अवा के एतरी जहमत का अवा बची वनो कुछ पेशेंट तो अड़ा हुआ जिका सिर्फ ये समझा तो असा नवाब शाह क्लिनिक शिफ्ट कर नवाब शाह दिया गया और उतना वापस आया दवाओं वन तो इन असा के यो एडवाइस है तो जेम अचो पे क्लिनिक प्रोग्राम बुधो पे एफ एम से अस क्लिनिक अचो पे तो असा कॉन्टेक्ट जरूर कर राबो असा जरूर कर अच्छा है तो अवं एक तो परे हलिया वो वरी वापसी मोटी अचो तो इन का बेहतर है सुबह आचर है तो खोड़ मुझा अड़ा दोस्त दवा वा कुछ पेशेंट्स हैं तो उन्होंने सभी के मैं यहाँ रिक्वेस्ट कदस तो सुबह अवं जिनमें गोठा निकरो तो स्टेशन रोड से अचो शेरवानी गिरी से न अचो स्टेशन रोड से इंदौ ते कें चवंद बाबा हाजी डॉक्टर हाजी इनायत क्लिनिक किथे है हाजी इनायत राजपूत जी क्लिनिक थे या डॉक्टर हारिस जावेद हाज मुझे नालो अजा अस हलो ही ना नको मुझे बाबे भी पाँच नालो न हलो तो मूँ भी उन जगह से नको मुझे नालो मशहूर आ नको मुझे बाबे जो बाबा पान ही दादे जो नालो हलन के पे हुआ थी तो इन कर मुझे नाले से मुख्य केर को सुणे मुख्य भी उत जगह सुणन था वह इनायत के नाले से सुणन था अवं इनायत के नाले से पुछा कदा के बुधा सदा स्टोर वाले के चवंद नवाब शाह मोड़ से इंदा उत पुरानो स्टोर है हुसैन मेडिकल स्टोर सब खबर आ हुसैन मेडिकल स्टोर से वही चवंदा बाबा हाजी इनायत की क्लिनिक कड़े पास है सीधो रोड वी अगत हलया वो अगत वही कें पुछा कदा के बुधा छदा बहरहाल नवाब शाह मोड़ स्टेशन नवाब शाह मोड़ स्टेशन के बिल्कुल विच से असि क्लिनिक मन नको घो अगत वो नको पे विच से क्लिनिक है रोड जो यो स्टेशन रोड सदाइबो आ शुरू का स्टेशन रोड सदाइबो आग स्टेशन आ पर स्टेशन से ना वनो अस विच में ब्रेक लगाना उतने निम जो वण लगो पो हों हाँ उत ब्रेक लगे वो तो इन रोड से एक ही निम जो वण है इन कर निम जो वण की निशानी अस कल भी दिनी अज भी दूँ पे रोड से एक निम जो अगर जो है अलम लगल त ये निशानी होंदी असान जे बुधाने जे हिसाब से पे इतने निम जो वण हों उदा ही ब्रेक लगाए कॉल कंदा सामू ही असा अवे मिलंदी बहरहाल छो तो जगह असड़ी शे खबर है तो गोठवारा जो भी हूँ उन्होंने एकड़े चक्कर पहुँचाए छो बेवारे पाने सीधो अची वा तो इन करो चक्कर इंदा तो सके अचने में थोड़ी तकलीफ थे परेशान न थीजो नंबर से कॉल जरूर कजो कॉल कद अस कॉल जरूर खासी अस अवें जरूर पुछा कदासी किथे बीठा तो असें जरूर कस समझाइंदास अच्छा सामिन शे जरूर याद रखो तो उतरे अस क्लिन की टाइमिंग हुई पंजे ताणी तो इतने क्लिन की टाइमिंग अस छे वगे ताणी जो अवं निकरो पीस रोड रस्तान को का खतरा थी वे जो टायर पंचर या का मसला मसाइल थी था वन अवं उनमें परेशान न थीजो अवं अस कॉल कर चीज अस अचू पाया रस्ते में आयो गाडी जो कोई मसलो थी वो या अचण में का तकलीफ थे पी तो अस पोची वासी पर असें ब टे मिनट अना लगन तो अस अवज इंतजार भी जरूर कदूँ ये परेशानी न थो तो मना गाडी जो मसलो थी तो हाँ डॉक्टर हल वो वापसी वो न उम्मीद सारे अचो पे अल्लाह अवे खैरियत आफियत से अस पोचाए अवं दवा खाओ इनशाला जरूर सेहतियाबी मिले सामिन प्रोग्राम में अज के प्रोग्राम में भी अस घी चुनाव समझाए वासी तो जरदर चूँ पे हाँ सकरण होम्योपैथी क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथी क्लिनिक थी वही पैरी वही शहर वाणी कीरिया हाँ है स्टेशन रोड सकरण से इनशाला कुछ वक्त में असा बोर्ड वगैरह लगी वा तो अवं के ईसंदा पाने समझी तो हम अक्टर इतने वेठो आ बहरहाल आर्डर बोर्ड जहाँ दिनल फ्रेम वगैरह जो सब शैर बस बोर्ड अचण वन में कुछ वक्त लगे पो तो इन कर लेट से वेट थूँ पाया बहरहाल इनशाला उम्मीद है तो जल्दी कम थी पवो असमें प्रोग्राम में अज के जो बीमारी आ जैसे बारे में अस अवं से कुछ शूँ शेयर कदासूँ अवं के उन बीमारी के बारे में जान दींदूँ तो वह बीमारी है दिमाग अच्छा दिमाग के बारे में खोड़ शूंदी जैमें फॉलिज आ दिमाग की रगून दिमाग में एक पर्द जैसे डॉक्टर से घर का बीमारी चवन मिनीजाइटिस उनमें पानी पे या उनमें सोच थी मिनीजाइटिस हों लकवो फॉलिज थी तो वे उनके अलावा दिमाग की रग फाटी वे याददाश्त की कमजोरी केदी मेल नंढा बार दिठा हों तो उनका जो मथो आ शिकल का फेस का वो दिसण में इंदो तो वह पानी थी सोज वगैरह थी अंदर पर्दन में तो ये सब केस बीमारियों आन अज के प्रोग्राम में असाज सेहत जो राज होम्योपैथिक सागर तो इन में प्रोग्राम में अजो यहाँ टॉपिक्स जैसे बारे में शूँ अस जरूर शेयर कदासूँ पर इनका बेहतर एक शेवा वही याद कराई तो वनूँ तो जो बे औलाद वा तो वह परेशान न थन होम्योपैथिक दवा से इलाज कराने इनशाला अल्लाह से उन्होंने जरूर औलाद तो वह भी परेशान न थन अची सकन था पाँच टेस्ट रिपोर्टन से गड उन्हें जो बेहतरीन मेडिसन थी अस उनके जरूर दींदूँ अल्लाह उनके शिफा जरूर दी सामिन अजो के प्रोग्राम में टॉपिक मोट तमाम वो आ देर न था क्योंकि टॉपिक की तरफ हलूँ था चुका टॉपिक अवज जो अज है वह है दिमाग के हवाले से उनमें सभी का पैं अस नंटी नंटी शंटी शय के बारे में समझाइंदी हल्दी वही शय के बारे में तो दिमाग में सभी का पैं नंढी में नंढी बीमारी है याददाश्त कमजोर सोच वीचार की सलाहियतू घट थी वन कें बारे में सोचूँ पे समझ में न पो अचे तो मन दिमागी कमजोरी है यह दिमाग की कमजोरी आ का शूँ पे अदा ही वही वी आने पो पर उतने वही विसरी तो वे अल चई वरी फोन कर पूछा कद वरी वी दिमागी कमजोरी आ हलूं पिया वञूं पिया कंहिं जॻह ते कंहिं वजह ते रस्तो में वरी कंहिं पासे ॿिए पासे निकिरी वियूं दिमाग़ी कमज़ोरी आहे याददाश्त रस्ता रोड रस्ता विसरी वेंदा आहिनि माण्हू ग़लति टर्न करे थो वञे वरी हुते बि वरी मालूमात वठे थो यार फलाणी जॻह काॾे आहे पंहिंजी मतिलबु इहो न आहे त उहो रस्तो विसरी वियो आहे इहा याददाश्त जी कमज़ोरी आहे छो त रोड रस्ता यादि न बीठा उन टाइम ते दिमाग़ी कमज़ोरी आहे दिमाग़ बिल्कुलु ठीकु आहे इहो न त मां चवंदुसि त दिमाग़ सही कान्हे ख़राबु आहे न कमज़ोर आहे उनखे सुकून कोन थो मिले चिड़ चिड़ माण्हू कावड़ में माण्हू थोरी का ॻाल्हि ॿुधंदो थोरी का जज़्बाती ॻाल्हियूं ॿुधंदो त यकदमि जोश चढ़ी वञनि कावड़ में अची वञनि इहो दिमाग़ी कमज़ोरी आहे सोच वीचार घणो न थी सघे याददाश्त बिल्कुलु ख़तमु थी पए दिमाग़ी कमज़ोरी आहे इन में सभिनी खां बहितरीन जेको इलाजु आहे उहा होम्योपैथिक आहे त होम्योपैथिक में सभिनी खां पहिरीं इहा ई हूंदो आहे त बीमारी ख़तमु थिए सिहत बहाल थिए सिहत बहाल थी वई त पेशेंट पाण ख़ुशहाल थी सघंदो त इन करे अव्हां जे इन याददाश्त जी कमज़ोरी छो त घणा स्टूडेंट्स आहिनि जेका शागिर्द आहिनि उहा बि का सब्जेक्ट वग़ैरह यादि कंदा आहिनि त उन्हनि खे उहा सब्जेक्ट वग़ैरह बि विसरी वेंदा आहिनि त उहा बि दिमाग़ी कमज़ोरी आहे छो त यादि करे घरां यादि करे वञनि स्कूल पहुचनि पेपरनि में वञनि पेपर जीअं साम्हूं अचे शइ विसरी वञे दिमाग़ी कमज़ोरी आहे
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम बाबा केर ॻाल्हाए पिया किथां खां
2: केर आ चाचा मुझे चाचे को बोला आपका अंदर से
0: अच्छा ठीक है एफएम बदो पुट डॉक्टर साहब बुधाइन था इन हवाले से वधिक न था गलाए सको डॉक्टर साहब पाणी जवाब दिला जी डॉक्टर साहब
1: अवां पंहिंजे चाचे खे ईअं चयो त सुभाणे आचर आहे क्लिनिक खुलियल आहे अवां पंहिंजी जेका टेस्टूं आहिनि रिपोर्ट्स आहिनि जे न आहिनि त पोइ तव्हां पाण ऐं चाची तव्हांजी ॿई अची सघो था क्लिनिक ते अचण सां इहो फ़ाइदो थींदो अचण सां इहो थींदो त कंहिं में कमज़ोरी आहे छाजे करे न पियो थिए उहा सभु असां हिसाबु किताबु चेक कव कप करे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं अल्ट्रासाउंड हिते ई असांजे ऐं क्लिनिक ते अची विया आहियूं त हाणे अल्ट्रासाउंड सम्झो असांजे लाइ विच थी वियो साम्हूं बसि रोड ते पवंदो अल्ट्रासाउंड वारा वेठा त उहा बि अव्हांखे अल्ट्रासाउंड बि थी सघे थो लेडीज़ जे जेको मसाला थींदा आहिनि बीमारी थींदियूं आहिनि उनजे बारे में असां ज़रूरु ॾिसंदासीं जे असांजो कमु थी वियो त बहितरु आहे न त हुते ई लेडी डॉक्टरनी वेठियूं आहिनि रेफर कंदासूं पर्चो ठाहे ॾींदासीं जेका अव्हां वेंदव त उहा तव्हांखे रिस्पेक्ट ज़रूरु ॾींदी परेशान न थियो वे औलाद आहियो अलाह तव्हांखे ज़रूरु औलाद ॾींदो सभिनि प्रोग्राम में जेको टॉपिक आहे याददाश्त जे हवाले सां मां अव्हांखे ॿुधाए रहियो हुउमि त कुझु स्टूडेंट्स आहिनि जेका सब्जेक्ट वग़ैरह यादि कंदा आहिनि त वरी पेपर में या कंहिं जॻह ते वञी वरी क्लास में हुजनि था त उहा विसरी था वञनि या टीचर साम्हूं चवे पियो त बाबा हीउ सवाल जो जवाबु फलाणो ॾींदो पर जीअं उहो चवे थो हा मुंहिंजी वारी अची वई जीअं उथंदो अड़े राति त यादि कयो हीअं दिमाग़ में अचे ई न पियो हाणे ॿ टे डंडा टीचर खां खाए वरी वेही थो रहे पोइ यादि थो अचे साईं सवाल का जवाबु ॾिए था त इन जो मतिलबु इहो आहे त याददाश्त जी कमज़ोरी आहे इन जो इलाजु थींदो इलाज खां पोइ इहा सभु शयूं ख़तमु थी सघनि थियूं छो त इहा जेका शइ आहे न इहा अॼु प्रोग्राम में इन शइ खे मां हाईलाइट इन करे कयां पियो त कुझु माउ पीउ जेका आहिनि उहा पंहिंजे नंढिड़े ॿारनि ते ग़ौर नथा कनि उन्हनि जी पढ़ाई ते ध्यानु नथा ॾियनि ॿार ॾिसूं पिया त ॿार पढ़ाई में पोइते वञे पियो उन वजह आहे असल में छा उन शइ खे माण्हू ग़ौर करे स्कूल में पढ़ाई त सभिनी जॻह ते सुठी आहे मां का ख़राबु कंहिंखे न चवंदुमि सभिनी जॻह ते सुठी आहे मूं खोड़ अहिड़ा माण्हू ॾिठा आहिनि जेका सरकारी स्कूल में पढ़ी अॼु कंहिं सुठी नौकिरी कनि पिया इन करे सरकारी जी पढ़ाई ख़राबु कान्हे का हर इदारे में कंहिं न कंहिं शइ ते कंहिं न कंहिं शइ ज़रूरु सेखारी वेंदियूं आहिनि त इन करे प्राइवेट या गवर्नमेंट सभु हिकु जहिड़ा आहिनि पर ॿार पढ़े न पियो कामयाबु न पियो थिए नंबर एग्ज़ाम अचनि पिया नंबर घटि अचनि पिया ऐं पढ़ाई तरफ़ ध्यानु कोन्हे त उन में का न का वजह आहे उन में दिमाग़ी कमज़ोरी बि वजह हिकिड़ी आहे उनजो माण्हू इलाजु कराए सघे थो दवाउनि सां उनजे इलाज सां बहितरु फ़ाइदो थींदो ऐं उहा जेका पंहिंजी पढ़ाई आहे उहा सुठे करे वेंदो अॻिते कामयाबु थी सघे थो इहा माउ पीउ खे सोचिणो आहे त उहा इन ॻाल्हि ते ज़रूरु ख़्यालु कनि नंढिड़ा ॿार आहिनि हींअर पढ़ी वेंदा अॻियां अव्हां जे लाइ ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीअ जे लाइ ज़रूरु कमु ईंदो इन करे ख़्यालु कयो त इहा शयूं महसूसु थियनि पियूं त इलाजु कराए उन शइ खे ख़तमु करे छॾियो होम्योपैथिक में जेका ॻाल्हि थी वई त हाणे ॻाल्हि ज़हन में अची वई त होम्योपैथिक में हिन चैप्टर जे लाइ हिन विषय जे लाइ अलॻि हिकिड़ो असांजे वटि लेक्चर्स थींदा आहिनि उन में इहा चवंदा आहिनि त स्टूडेंट खे तव्हां सभु पंहिंजे वटि पाण वटि विहारे छॾियो माउ पीउ खे ॿाहिरि कढोसि अकेलो विहारे छॾियो ऐं स्टूडेंट सां क्वेश्चन आंसर कयो त बाबा मसइलो छा थिए थो अव्हां सां जेॾी महिल अव्हां कुझु स्टूडेंट अहिड़ा आहिनि त जेॾी महिल कंहिं आवाज़ जो तबाह फलाणो त हू उथण खां ॾिके पियो ख़ौफ़ महसूसु करे पियो त इन इन में अवां जेको आहे बार में सलाह घट आहे। का टीचर चए थो भई फलाणो अहमद खान उठी वञे, सलीम साहब सलीम उथ, इन सवाल जो जवाब ॾे, इहा छा आहे, या ब्लैक बोर्ड ते अचे असां वटि हेॾा साम्हूं अचे, इन सवाल जो जवाब हिन बोर्ड ते लिखो, त उहा ॾके थो, ख़ौफ़ थो खाए, अड़े अलाए छा थींदो, मूंखे ख़बर नाहे। इहा कमज़ोरियूं आहिनि इन्हनि जो। हींअर ई कनि शइ खे तव्हां ॾिसी करे जो इलाज कराए वेंदव त अॻियां जेका कॉलेज में वञे, यूनिवर्सिटी में वञे, अलाह हुननि खे तरक़ी ॾिए, तई वञे त उन में एतिरी एबिलिटी हुजे का सुभाणे जेका शइ जी उनखे डिमांड मिले त उहो उन डिमांड खे पूरी करे। इहा हाणे खां तव्हां इन शइ ते एहतियात कयो। स्कूल में पढ़ाई ते ध्यानु कोन्हे, वजह छा आहे, असां डॉक्टर जंहिं महिल पढ़ंदा पेशंट सां वेही इन हवाले सां राब्तो करणु, पोइ ख़बर पवंदी आहे त वजह छा आहे ऐं छा जे करे उहा पोइ ते रहिजी थो वञे।
0: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, केरु असां सां ॻाल्हाइनि? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: बाबा केरु ॻाल्हायो पिया, किथां खां?
1: गड़बड़ करे वञो उन खां पोइ रहंदो तव्हांजी बांह ख़राब थिए, ज़ख़्म ख़राब थिए।
0: इहो बि ख़बर न आहे त फट केतिरो आहे, कीअं
1: कहिड़ो आहे, नासूर थी वियो आहे, अंदरि सुई रहिजी वई, निडल रहिजी वई, या दवा सही न हुई, सुई हॾ में वञी लॻी आहे, उन जे करे थियो आहे। खोड़ अमा शयूं आहिनि, हर शइ खे माण्हू ॾिसी करे पोइ सां सही दवाऊं ॾियनि त जंहिंसां अव्हांखे फ़ाइदो बि थिए। ऐं होम्योपैथिक में अव्हां जे इन शइ जो इलाज कराईंदो असां वटि थी सघे थो, इहो न कोन थो थी सघे, पर असांखे अव्हांजो हिकिड़ो बांह जो कारो फोटो कराइणो पवंदो, जंहिंमें हॾे जी हालति छा आहे उहा ॾिसणी पवंदी। ज़ख़्म जे हॾ खे लॻी वियो त सम्झो असां ओॾीमहिल अमां असां वटि इलाजु कोन्हे, जे हॾु बची वियो आहे त पोइ असां इलाजु शुरू कंदासीं। इहा शइ ॻाल्हि ज़हन में रहे, इहा छा आहे त इहा अव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो न आहे त अव्हां खो ॾे अचो, न, इहो ॿुधाइण जो मक़सदु आहे त अव्हां इन शइ खे सीरियस वठी इलाजु कराए वठो। डॉक्टर सां थी सघे अव्हां इलाजु करायो पिया, इहो न तव्हां इलाजु न पिया करो, कराईंदा हूंदा, पर हिन शइ खे जीअं असां बारीकी खां हर शइ खे ॾिसंदा आहियूं न, ग़ौर सां ॾिसंदा आहियूं, ज़ख़्म थी वियो आहे, हॾ थी वियो आहे, सुई छा में लॻी, हॾ में लॻी आहे, या सुई ग़लति लॻी आहे, सभु शइ ॾिसी करे पोइ का दवा सलेक्ट कंदा आहियूं त हीअ दवा ॾियणी आहे, तयारु थी पवंदो।
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
3: सर वालेकुम सलाम।
0: उदास इमाम बख्श की रहो?
3: जी सर।
0: बाबा छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
3: ख़ैर छा, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं?
0: ख़ैरु लॻो पियो, अलाह जा एहसान। छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहब खां?
3: सर मथे में सूर आहे पोयां खां।
0: अच्छा कहिड़ी खां?
3: जी हा सर।
0: कॾहिं खां वठी सूरु पियो अथई?
3: ॿ ॾींहं त थी आया
0: आहिनि। हलो अलाह रहम कंदो, FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो। अजी डॉक्टर साहिबु, उदास इमाम बख्श कीरे साहिब खे मथे में सूरु आहे।
1: उदास साहिबु, तव्हांखे मां इहो ई चवंदुमि त पहिरीं तव्हां पंहिंजो ब्लड प्रेशर चेक करायो, शुगर चेक करायो, थी सघे खां गर्मी में विया आहियो त अव्हां जिस्म में निमकियात जी कमी थिए पई, जंहिंजे करे इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि जी या त वधीक थी विया, घटि थी विया, उहा वेची के डॉक्टर सां अव्हां चेकअप कराए छो त सलीम साहिबु अव्हांखे चवंदो बि आहे त क्लिनिक ते अचे दवा चेकअप करा, दवा खणु डॉक्टर तो का पैसा चवे त मां पाण ॾींदुसि, त बि तव्हां कोन था अचो। हाणे तव्हां आया आहियो न, पहिरीं मां पैसा वठंदुमि पोइ दवा ॾींदुसि तव्हांखे, पोइ तव्हां ईंदव। हिन करे बहितर आहे तव्हां पंहिंजो ब्लड प्रेशर ऐं शुगर चेक करायो, घटि आहे त उन जे लाइ दवा, वधीक आहे त पोइ उन जे लाइ दवा वठो, इहा शयूं गुम थी पवंदियूं। सभिनि प्रोग्राम में अॼोको टॉपिक जे हवाले सां दिमाग़ी यादाश जी कमज़ोरी ते असां बहस कयूं पिया, अव्हांखे सम्झायूं पिया कुझु कुझु शयूं आहिनि जेका अव्हां ज़रूरु सम्झो, इहा शयूं अव्हां जे लाइ बहितरु आहिनि। उन में कुझु स्टूडेंट्स हुआ, शागिर्द हुआ, उन जे बारे में अव्हांखे लाइ सभु शयूं असां रखियोसीं साम्हूं। का अहिड़ी शइ महसूसु थिए पई त उनखे वक़्तु आहे, हींअर टाइम आहे इन शइ खे इलाजु कराए उन शइ खे ख़तमु कयो, सुभाणे तव्हांजो ॿार बचो कामयाबु थी सघे। उन खां अलावा कुझु असांजा कारोबारी अफ़राद आहिनि, कारोबारी अफ़रादनि त उहा बि इन बीमारी में ज़रूरु मुबतला थींदा आहिनि। वजह छा आहे त रश आहे, बोझ घणो आहे, ऐं कमु तमामु घणो आहे त दिमाग़ खे सुकून कोन्हे को, जंहिंजे करे कम में एबिलिटी कमु जेको मुकमल न पियो करे सघनि। छो त तव्हां पाण हिकिड़ी शइ नोट कयो हूंदो त कारोबारी आदमी आहे, उनजो दिमाग़ हमेशह तेज़ हुअणु खपे, पोइ बि छा कंदा आहिनि, कैलकुलेटर पिया हूंदा आहिनि, हुतां खां टोटल कंदा आहिनि, ऐं घणा करे अहिड़ा ॾिठा आहिनि माण्हू त पैसा अबा 4,500 रुपया थी विया, हाणे उनखे ॾिनासीं 5,000 रुपया, हाँ वो छा कह पंज हज़ार में चार हज़ार पौ रुपया कटी बकाया घना बचा वह दींद मन एतरो जहन कम न पो करे तो यार बकाया 500 बचा मैं दई छा न कैलकुलेटर में हणद हिसाब बाबा 5,000 थी माने साढ़ा 4,000 500 बचा 500 रुपया थी या छा दिमागी कमजोरी है याददाश्त की कमजोरी है इन जो इलाज से यह शे खत्म थी सके थी। उन अलावा अस कोशिश क्यों पा अगत की कारोबार वधाने की कोशिश क्यों पा पर अस में कोशिश क्यों पा सिर्फ कम क्यों पा नुकसान थे पो वधन की कोशिश क्यों वापसी पे तो धिको अचे पो इन मतलब यो ना तो तवे मथा का शे थी वही है बंदिश वगैरह जी चौदा ना थी वही है या शे कान का इनमें अवा पान में जो चौदा ना पे गिरबान में ऐसो पानी किचिया में ऐसो गिरबान में उर्दू में चौदा तो उनमें चाहे अवा अगत के ला अवा में सलाहतू आन अवा में एतरी सहप है तो अगत कम वायूँ तो उनके संभाले सौ यह शूँ जो आन तो कारोबार पाने पा अगत जे यह शे ना तो तक लॉस थे पो अवा कम वाव पा तो लॉस थे पो कम इन वजह चाहे दिमाग में कमजोरी को समझ में न पो अचे हाँ कम कि कबो ए कि संभाल पो उन नौकर वगैरह घना रखना पौधा मानू रखना पौधा उनके पगार सागो जो लॉस थो हों पगार में लॉस गाल तोड़ी थी वही तुम वो कन के आओ तटो पर याददाश्त जी सैट थी हर शे सैट थी तो वे अवा पा एक गाल नोट कर तो अस वेठा इन शहर में अस अगत की कोशिश क्यों पा पर हि जी कराची हैदराबाद में एतरी वी वी बिल्डिंग ठाए वह ये कि वो तो मून या तो इंसान या तो असा पाकिस्तान में रहन था न ये बेपास दको ये सागे मानी खाइन ये सागो अन्न खाइन बो का बीकाशे दकों खाइन पर छो वजह चाहे तो वो पाँचे पान के नंढी उम्र का ही पान एतरो काबिल ठाया तो सुबह की अस हम कम क्यों का शे का बिजनेस वगैरह क्यों तो अस माइंड सेट हो तो इन कम के कि हलो तजुर्बो होन अस हिंस का नंढन की कोशिश क्या पढ़ाई कर पा सुठो कामयाब थे तो पढ़ाई कर वो कि पढ़ाई ना कर तो कारोबार शुरू कर हिंस का तुम उनके कारोबार सिखारींद कोशिश कर तो पढ़े वे पढ़ी वे तो अंजा अगत सुठी पोस्टू मिली सन थी पर चाहे तो का बीमारी आ कमजोरी आ याददाश्त की कमजोरी आ उन इलाज करा फर्स्ट क्लास थी सके कें वी नौकरी सरकारी नौकरी मिली वे पाने पान ही तो वह बेहतर आ ना नो थी सके तो उन कारोबार में वांदा घर में न विहारो वांदा वेंदा उनकी जी सलाहतून वह सफा खत्म थी वेंदा बार बच्चा कोई घड़ा कर नशे जो है नशे वाली आदत नौजवान में इतना ही शुरुआत थे थी वांदा वेठान दोस्त संगत में निकरन था तो कुता ना कुता आस्ते आस्ते शूँ शुरू थी पाँच पान के पाँच औलाद के इन शन का बचाए यह शे नुकसानदेह अवाज सेहत के लिए भी नुकसानदेह अवे खाधे अवज घर के लिए भी नुकसानदेह एकड़ो खाई वे बे चार लाइन शुरू थी वन इन शन का एहतियात कर कम कार में लगे छो मजदूरी कें शे उनके लगे छो बनी बार उनके लगे छो कें शहर में सुठी जगह दुकान को वास्ते वा हों तो कम से लगे छो इन चाहे तो शूँ सीख उनके दिमाग में कुछ शूँ जरूर इंदी तो कारोबार ये कि हल पो कि सहे पो सब शे सीखी कारोबार खोले वो सुबह कामयाब अवे दुआओं दी
0: डॉक्टर साहब कॉल वा असलामुअलैकुम
4: मैं डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम
0: आदा वालेकुम अस्सलाम केर गलाए पे किथा खा
4: आदा मुश्किल लगारी वो गलाया हाजी की रेगा
0: अजी मजा भा छा सवाल है डॉक्टर साहब ला
4: आदा मके छिक्की न पी छले
0: अच्छा कदे का वटी छिक्की आए मजे भा के
4: हां आदा छिक्की न पी छले
0: कदे का वटी छिक्की आ
4: ने 3-4-5 साल दवा वठ तो वा की मैं दवा वठी दवा छले या वरी थी दी
0: अच्छा ठीक है दादा एफएम बुद डॉक्टर साहब बुधाइन था जी डॉक्टर साहब
1: असि छिकी जो धारो मदार थिंदो आए माते ते गरमाइश माते ते कमजोरी सा यो हकीम ताके बुधायो ल न बुधा साई खबर कने का पर असल वजह इहाई आउती आए मादो कमजोर आई मादे में गरमाइश काब गरम शे खाए वियासी या मानी जे लेट सवेर थी वई गर्मी में निकतासी छिकी चालू थी पोंदी आई छिकी चालू थी पोंदी पो आ ये सब तकलीफ थी पोंदी इन ला बेहतर आवा थदी शो इस्तेमाल कयो साई भाजियों इस्तेमाल कर पानी जूस वगैरह इस्तेमाल कर बाकी जो मेडिसन्स दवाओं वहाँ इस्तेमाल कह होम्योपैथिक वाली इस्तेमाल कर सोता इन से अवी छिकी गुम थी वी इंशाल्लाह
0: जी हाँ सभी शफा जन अलाजी जो कम हों डॉक्टर हिलो वसीलो हों सभी होम्योपैथिक तरीका इलाज में कोई साइड इफेक्ट को डॉक्टर साहब खानदानी डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर साहब जो सुठो तजुर्बो आहे ऐं डॉक्टर साहब पाण लेक्चरर पिणु आहिनि समय डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाँ जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूद हूंदा आहिनि सुबुह जो 9 खां शाम 6 वगे ताईं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जी टाइमिंग आहे मोबाइल नंबर 02-27-89-84-7-6-3 जी हाँ समीन यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर है तवा इन ते कॉल करे डॉक्टर साहब का लाइव सवाल पूछी सकंदा आयो क्लिनिक ते भी डॉक्टर साहब वट यो ही नंबर मौजूद होंदो आहे समीन मैं हमेशा वा के चयो आहे त पंजो ख्याल रखंदा कयो पंजी सेहत जो ख्याल रखंदा कयो ऐं पंहिंजन घर वारनि जो पंहिंजनि ॿारनि बचनि जो पंहिंजनि ॿारनि बचनि जो बि ख़्यालु रखंदा कयो समय बीमारी अचे तमामु जल्दी थी वञे त ॾाढी ॾुखी थी त इन जे लाइ अॼुकल्ह जो ॾिसो था पिया महांगाई जो हिसाब किताब इलाज हर शइ महांगी थी वई आहे त उन जे लाइ पंहिंजो ख़्यालु रखियो ऐं पंहिंजो एक्स्ट्रा ख़र्च करण खां पाण खे बचायो डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: अदा केर गलाए पे किथा का
4: जिले सांगर का गलाए पे साईं
0: जिले सांगर का जी मुजा भा केर पे गलायो
4: साईं अम्मा जी जिले तबीयत ठीक ना है सा डॉक्टर साहब ऐसे में खबरो बदो तो आ सब पूछो
0: अच्छा अम्मा के छा थयो दादा
4: साईं अम्मा जो दिमाग में सिर में सूर
0: अच्छा दिमाग में सूर
4: हाणे वरी छा थियो त सॼे मथे में जीअं झार माण्हू तरे शुक हले पियो कमज़ोरी जाम आहे
0: अच्छा
4: जी जी
0: चले को मसलो कोन्हे
1: साईं अम्मा जे हवाले सां जेको अव्हां जो सवाल हो उन में अव्हां इहो चयो त अम्मा जे कननि में आवाज़ थिए पई ऐं मथे में सूर थिए पियो डॉक्टर्स ॿ टे ॻाल्हियूं चवनि पिया माना हिकिड़ी ॻाल्हि न पिया कनि जंहिंसां सम्झ में न पियो अचे त अम्मा सां मसलो असल में आहे छा माना चवण जो मतिलबु इहो हो इन जो इन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि में हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे जेका मेन आहे उहा सम्झ अचे पई त डॉक्टर अव्हां जी अम्मा जी बीमारी ते पहुता ई कोन्हनि खे बहितर रहंदो अव्हां खणी अचो चेकअप कराए वञो इनशाला को न को रस्तो ज़रूरु ॾींदासूं
0: डॉक्टर जी डॉक्टर साहब
1: रस्तो अव्हांखे ज़रूरु ॾींदासूं जंहिंसां इहो थिए त अम्मा जी तबियत कुझु बहितर थिए कुझु सलाहियतूं सही थियनि अच्छा इन में खोड़ शयूं आहिनि लाज़मी न आहे त जेका डॉक्टर चवनि पिया रगूं या शइ कननि में सुराख थी वियो आहे त इहा मां न चवंदो कन में सुराख थी वियो कन में सुराख थियण जी ॻाल्हियूं तमामु ख़राबु आहिनि उहा वॾी ॻाल्हियूं आहिनि त इन में अव्हां न सोचियो कन में सुराख थी वियो आहे
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
5: हेलो सर अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम अदा केर ॻाल्हायो पिया किथां खां
5: सर साजिद अली मस्त हुई नवाब सामा
0: जी अदा छा सवाल आहे डॉक्टर साहब लाइ
5: सर असांजो सुवाल इहो आहे त नंढड़ी भेण आहे हुनखे सर नक में रत ईंदी आहे नकर ईंदी आहे ऐं सर ॿियो सुवाल आहे त हीअ जो असांजी सिंधी छोकिरी आहे त हुनखे सर हुनजे मैदे में थोरी गरमाश थींदी आहे ऐं हुनखां पोइ थोरी वात में हल्की हल्की रत ईंदी आहे त इहो छाजे करे आहे
0: ठीकु आहे ठीकु आहे एफएम ॿुधो डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था अजय डॉक्टर साहिबु हिकिड़ी नंढड़ी खे नाकेल ईंदी आहे ॿी नंढड़ी खे वात मां ब्लड अचे थो मैदे जी गरमाइश खां पोइ जी डॉक्टर साहिबु
1: बिल्कुलु ॾिसो हाणे सम्झाइण जे लाइ मूं वटि ॿ ॻाल्हियूं थी वियूं अव्हां जूं हिकिड़ी खां तकलीफ़ आहे त हिकिड़े खे नक मां रत अचे पियो हिकिड़े खे वात मां रत अचे पियो माना ॿ बीमारियूं आहिनि असल हिकिड़ी ॻाल्हि रिसीव कयूं था पोइ इन सवाल जो जवाबु ॾियूं था छो त हू ॻाल्हियूं कुझु मूंखे सम्झाइणी पवंदी टाइम लॻी वेंदो
0: अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम साईं छा हाल
0: आहे साईं दुआऊं अलाह जायसान केरु ॻाल्हायो पिया किथां खां
6: मां केरु था ॻाल्हायो साईं
0: साईं तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो किथां खां सलीम ॻाल्हायां पियो
6: अच्छा साईं ठीकु ठीकु मां साईं اسماعیل کان تو گالایا عبد الستار نالو آ بابا
0: اجی سے حکم کیو چھا سوال آ وانجو ڈاکٹر صاحب لا
6: ڈاکٹر صاحب سا ارزاد سے طبیعت صحیح نہ تو رہے پیرا ما تا سال کے ڈاکٹر صاحب سے اچو
0: جی جی
6: او ہن اللہ خیر کرے سب جو اسائیں داسی نمبر تے کم کی اسائیں
0: جی جی نمبر وائز سسٹم ہوں تھی جو نمبر جی کال کی ہے ڈاکٹر صاحب کلینک تے یہ نمبر موجود ہوں تو سٹ میل کا اچھی ڈاکٹر صاحب کا علاج کرائے ان شاء اللہ ضرور صحتیاب تھی شفا جن اللہ جی ذات جو کم ہوں
6: ٹھیک
0: ہے ان نمبر تے رابطہ کجو جی ڈاکٹر صاحب سوال جی ہوا بھا ساجد جا جی سر
1: بالکل بھائی ساجد جا سوال ہوا سوال ہوا ایکڑے جکا ننڈڑی ان کے نک میں رت اچے پہ ایکڑے کے وات نہ اچھے اچھا ساجد بھا ان میں کچھ شو نوٹ کجوس رت اچے پہ نک میں پہلے نک والے رت کی گال کھینوں تھا نک میں رت اچے پہ تو ان میں وجہ چاہے تو جی کا اسکول کا اچے پی پڑھے یا کا گرمی میں اچے پی تب رت اچے پہ تو سمجھو کا خطرے کی گال کھانے کا پریشان تھن کی کا گال کھانے کا یہ گرمی لگے پی ان کے رت اچے پی تو ان میں تو سمجھو سفا سولو کم آسان باقی جا رت اچے پی گرمی میں نہ پی اچے گھر ویٹھی ہے پکے جیٹ ویٹھی ہے تب رت اچے پی تو یہ ہے نک کے اندر انفیکشن تھل زخم تھن ہاں وہ چھ میں تھل یہ چیک اپ کا ہی ان فوٹو نکرد ان کا ہی سمجھ میں تو ان جگہ سے زخم تھی ویو ہے چو تو پرانا گاڑا وغیرہ تھن مغز میں ان کے کرے یہ تکلیف تھی پوندی ہے ایتری کا خطرناک کا نکا پر یہ بیماری ہے صحیح باقی جو وات رت اچے پی ان میں مادے میں زخم تھی سکے تو ان کے علاوہ گلو ان میں کئی نہ کئی جگہ انفیکشن تھی سکے تو ان کے رت اچھی سکے تو ان جو علاج ضرور کرنا ہو یہ علاج ضرور کرائے تو یہ رت اچے پی ان کے دسنو پو چالا اچے پی ان میں بگالیوں بنین میں بگالیوں نوٹ کر موڈے اچو تو رت جو کلر کہڑو آ کارو یا گاڑھو بشوں نوٹ کجو کی مل اچے پی یہ شی نوٹ کرے پو موڈے کلینک اچھی ون
0: جی سمین اواں بدھو پیا جی سکر نواب شاہ ایف ایم 90.8 لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سان ڈاکٹر صاحب جی کلینک جو نالو ہے حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک سمین کال وٹھوں تھا کیر سے سر موجود ہے نہیں کتھا کا السلام علیکم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سلیم خیال آدھا
0: سائیں دعاؤں والا جائسان تا بتایو ٹھیک ہے سکندر صاحب
7: سکندر منسی گولا 05
0: جی جی سائیں چھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب لا
7: ڈاکٹر میں سلیم سور نہ تو چھے بن ڈاکٹر میں ہیٹھی متھی
0: اچھا ڈاٹھ
7: جی
0: ہیٹھی ڈاٹھ پر متھی بھی ساگے ہندی
7: ہاں ساگے ہند ان ڈاکٹر کے آموں ساموں ہیٹھی بھی متھی بھی مائٹو بھی صحیح نہ ہے ڈاکٹر جی کا پیرن تے سوج بدھائی نا
0: جی جی ٹھیک ہے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب بدھائن تھا جی ڈاکٹر صاحب بھاؤ سکندر جو سوال
1: سائیں سکندر مقدر جو سکندر
0: سائیں جی
1: اواں
0: مجھے مائٹ بلا چواں
1: مائٹ سوال
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: سائیں اواں ماں اواں کے چوں ڈاٹھ میں سور تھو نا ان میں کھادا لا کیڑو لگل وجہ تھی سکن تھی ان کے کرے سور تھے پہ تو من ان تقریر کا علاج کندو جی وہ شے کانے کا اندر جگہ رگوں ہوں ان پہاڑ میں ان کے کرے سور تھے پی تو ان کی دوا تھی سکے تھی بہرحال ان میں تو اواں کے بہتر رہ کہ دند والے ڈاکٹر کے ڈکھارے تو سٹھو رہ ڈسی کرے تو بدائیں تو ہاں تا کہ یہ مسئلہ آ یہ تکلیف آ ان کے کرے تھے پی پر ان کی ایکڑی گال ذہن میں وہارجوس تو مجھے پہلے ہیپاٹائٹس تھل ہے مادے کی مجھے تکلیف تھل ہے مجھے گرم دواؤں تیز دواؤں مجھے نہ ڈیجو یہ شے تاں کے ماں ہیر ہی بدھایا پیو چھو تو مو مست تاں جو علاج کرے تاں کے تیار کیو وری تاں بیمار تھی ونجو ان کا بہتر ہے یہ شے ہوں ڈاکٹر کے زمان ضرور بدھائی جو
0: ڈاکٹر صاحب کال وٹھوں تا السلام علیکم السلام علیکم بابا کیر گلائے پہ کتھا کھا ہلو ادا مجھے کال ریسیو تھی چکی ہے ہلو اواں جو آواز کون آیا تھی کال ڈسکنیکٹ تھی وئی برائے مہربانی وہ کال کندہ کہ جنہوں جو ڈاکٹر صاحب کا سوال پوچھنے جو ارادہ ہوجائے سوال ہی پوچھنا ہو ڈاکٹر صاحب کال وٹھوں تھا السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: دعاؤں اللہ جائے سا نواں بتایا کیا ٹھیک ہے
8: चलो
0: को मसलो को नेको तवाजी टेस्ट ठीक आ
8: जी जी
0: ठीक आ सही तवा एफएम बदो डॉक्टर साहब वाके बुधान था जी डॉक्टर साहब
1: सही अवा जी जो सवाल है ना यो खतरनाक सवाल है त इन में कुछ शयूं मां एफ एम ते लाइव ॿुधाए सघां थो कुझु शयूं मूंखे लिकाइणी पवंदियूं हुन में कुझु शयूं वजूहातनि जो फैमिली प्रोग्राम हूंदो आहे त कुझु शयूं मां ओपन कंदुसि कुझु शयूं रहिजी वेंदियूं बहरहाल अवां जेके सुभाणे क्लेन ते अचो था त रूबरू अचो था त उहो अञा बहितर शइ आहे त असांखे हर शइ अव्हांजी सम्झ में पहुची वेंदी
0: बाक़ी तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधायूं था त डॉक्टर साहिबु वटि बे औलादनि जे लाइ ऐं कामयाबु तजुर्बे सां गॾु इलाजु आहे जंहिंमें डॉक्टर साहिब जो पंहिंजो जेका आहे त ईअं सम्झो पी एच डी थियल आहे ऐं बेओलादी जे हवाले सां डॉक्टर साहिब मशहूरु मारूफ़ आहिनि औलाद ॼण अलाह जी देन आहे अगरि तव्हां में तव्हांजी घरवारे में कोई इशू आहे उहो अलाह जे हुकुम सां ख़तमु थी सघे थो उन खां पोइ औलाद अलाह अता ज़रूरु कंदो डॉक्टर साहिब इन मामलात में मशहूरु मारूफ़ आहिनि डॉक्टर साहिब जो हिकिड़ो कामयाबु तजुर्बो काफ़ी मरीज़नि ते थियल आहे त तव्हां अची डॉक्टर साहिब वटि क्लिनिक ते अची मशहूरो करे सघो था इन मौज़ू ते वधीक एफ एम ते असां नथा ॻाल्हाए सघूं उन शइ जी माज़रत डॉक्टर साहिबु वधीक कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबु कॉल ई डिस्कनेक्ट थियो जी डॉक्टर साहिबु अधे जो जेको सवाल हुन बारे में थोरी तव्हां आगाही ॾियो जी डॉक्टर साहिबु
1: साईं अव्हांजो बसि मां अव्हांखे इहो ई चवंदुसि त तव्हां सुभाणे अचो पोइ वधीक जेको आहे रूबरू वेही थींदो जेका फीमेल आहे तव्हांजी उहा अची वञे त अञा बहितरु आहे वधीक साम्हूं ईंदो पोइ ई असां अव्हांखे कुझु शयूं सम्झाए सघूं था शयूं कुझु अहिड़ियूं आहिनि जेको असां नथा ॿुधाए सघूं छो त कल्ह को प्रोग्राम थियो हो त उन में मूं कुझु अहिड़ा वर्ड्स इस्तेमालु कया त जंहिंजे करे मूंखे कुझु कॉलूं आयूं त हुननि चयो यार इहा शयूं न कयो साईं अव्हांजो प्रोग्राम घर में हले थो त इहा शइ सही न आहे मुंहिंजो ठीकु आहे असांजी कोशिशि त इहा ई हुई त कुझु अल्फाज़ अहिड़ा हुजनि त जेके कंहिंखे बुरा न लॻनि कंहिंखे लॻी विया त कंहिंजी कंप्लेन अची वई त असां इन करे अव्हांजे सवाल जो जवाबु हज़म करे तव्हांखे कोन था ॾेई सघूं
0: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था केरु सां गॾु मौजूदु आहिनि किथां खां अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबु कॉल ई डिस्कनेक्ट थी वई शायदि मुंहिंजो भाउ या को मुंहिंजी भेण कॉल करे पई जिन्हनि जो नेटवर्क जो इशू आहे या त पोइ उन्हनि जो वटि जेको आहे त सिग्नल जो मसलो आहे या उन्हनि वटि कुझु बि आहे बहरहाल उन्हनि जो आवाज़ु असां वटि न पियो अचे सामिन अवां डॉक्टर साहिब जो प्रोग्राम ॿुधो पिया प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण करे हाज़िर ख़िदमत अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी सामिन असांजे डॉक्टर साहिब जो अवां सां गॾु साथ हूंदो पूरे नवे वॻे ताईं अवां डॉक्टर साहिब खां सवाल पुछी मालूमात वठी सघो था सर कॉल वठो था अस्सलाम वालेकुम
9: हलो अस्सलाम वालेकुम सर
0: वालेकुम अस्सलाम साईं केरु ॻाल्हायो पिया किथां खां
9: साईं ॻाल्हायूं पिया सराड़ी खां
0: जी सर केरु पिया ॻाल्हायो सराड़ी खां
9: मरी
0: जी अदा छा सवाल आहे डॉक्टर साहिब लाइ
9: साईं मुंहिंजी चाची आहे सोजी बि आहे
0: किथे सोजी अथसि दादा
9: साईं सॼे जिस्म ते
0: अच्छा
9: ऐं ॿियो हथ में ख़ारिश घणो माना थियसि थो
0: हथनि में ख़ारिश आहे ऐं सोजी आहे
9: जी हा
0: अच्छा कॾहिं खां वठी इहा तकलीफ़
9: आहे इलाही टाइम थी वियो आहे टे चारि ॾींहं थी विया आहिनि
0: अच्छा पेशाब वग़ैरह ठीकु आहे
9: हा साईं पेशाब सही आहे
0: ठीकु आहे एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था जी डॉक्टर साहिबु
1: साईं सॼे जिस्म में सोज थियणु उन जी वॾे में वॾे मज़ा थींदी आहे त जिस्म में रत जो घटि थी वञनि उन जे करे सोज थी वेंदी आहे ख़ासि करे हथनि ते पेरनि ते फेस चिकल ते इहा सोज थी पवंदी आहे उन में रत जी टेस्ट थींदी रत घणा पॉइंट आहे जे रत खुटियल आहे त पोइ रत लॻंदो पोइ पेशंट सही थी सघे थो बाक़ी मां अव्हांखे इहो ई चवंदुमि त पेशंट खे रत लॻाइण खां बहितरु आहे त पहिरीं मूंखे ॾेखारे वञिजो थी सघे असांजो जेको पॉइंटिंग आहे जेको पॉइंट असांखे खपनि था घटि में घटि असांखे खपनि था अठ पॉइंट जे थोरो घणो कमी पेशी आहे त माण्हू उहा दवाउनि सां ई कवर करे वठे छो त रत हिकिड़ो जॻह लॻंदो त पेशंट वरी हिरी था वञनि त इन ख़ौफ़ सां मां कंहिं पेशंट खे न चवंदो आहियां त रत लॻारायो मुंहिंजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त बाबा दवा इस्तेमालु कयो दवा सां रत ठही पवंदो अव्हांजी तबियत बहितरु रहंदी अॻिते जेको आहे अव्हांखे घणे तकलीफ़ुनि में पइजण खां बहितरु आहे अव्हां बची वेंदव इन करे या तो मुख्य चेकअप कराए वनो दिखारे वनो थी सके असि दवाओं से तो पाँच पानी कंप्लीट थी वे कें का वन की लगने की जरूरत ही न पे।
0: डॉक्टर साहब अवां जो पैगाम छा हुंदो असां जे सामाईन जे ला?
1: सामाईन जे ला पैगाम जी तरफ हलंदासीं छो त असां वटि हींअर बचिया आहिनि असां वटि सिर्फ़ 10 मिंट, माना हींअर असां वटि के कॉल करे सघे थो छो त टाइम असां वटि हींअर थोरो घणो आहे। सही अवां कॉल करे सघोसि था, का सुवालु आहे, का शइ पुछणी आहे त अवां पुछी सघोसि था। बाक़ी वधीक जेको आहे अवां क्लिनिक ते अची मशवरो करे सघोसि था, उन में अवां जे लाइ बहितरु आहे छो त क्लिनिक ते अचण सां पेशंट साम्हूं थी थो वञे, का शइ पुछणी आहे, का शइ ॿुधाइणी आहे, उहा सभु शइ साम्हूं थी थी वञनि। उन खां अलावा टेस्ट रिपोर्ट्स कुझु पेशंट वटि मौजूदु हूंदियूं आहिनि, उहा साम्हूं लाइव अची थी वञे, उन सां सम्झ में सुठे नमूने सां माण्हू सम्झी सघे थो पेशंट खे तकलीफ़ आहे छा। इन जे लाइ अवां क्लिनिक ते ईंदा हो त बहितरु कमु थी वेंदो, इलाज बि बहितरु थी सघे थो, ऐं उन खां वधीक जेको आहे कुझु कोन्हे को। समीन प्रोग्राम में आख़िर में हमेशह असां वटि हूंदो आहे हिकिड़ो पैगाम अवां जे लाइ प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक में। पर हिकु भेर वरी अवां खे ॿुधाईंदो हलाऊं त असांजी क्लिनिक सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक ख़तमु थी वई। ख़तमु न थी वई आहे, असल में क्लिनिक अवेयर हुई, परे हुई शहर खां, कुझु इलाइक़ो परे हो, ऐं पेट्रोल जा रेट माशाल्लाह तमामु मथे थियनि पिया त माण्हुनि खे अचणु ऐं गर्मी माशाल्लाह, त उन जे करे असांजी जेका पुराणी क्लिनिक हुई असां उनखे वरी खोलियोसीं त शहर में माण्हू अची वञे। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माण्हू खां ॻोठां निकिरे थो त शहर में वञे थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो कमु न हूंदो आहे, ॿ टे चारि ॿिया बि कमु ज़रूरु हूंदा आहिनि, त हू दवा वठनि बाईपास ते वञे, वरी बाईपास खां मोटी अचे, वरी कमु करे, गर्मी घणी आहे माण्हू परेशान ॾाढा थी वेंदा हुआ। त इन जे लाइ कुझु पेशंट जी शिकायतूं बि हुयूं जंहिंजे करे असां क्लिनिक खे हिन पासे शिफ्ट कयोसीं, ऐं अलहमदिल्ला अॼु पहिरियों ॾींहुं असांजो इन क्लिनिक ते मौजूदु हुयूं। पेशंट तक़रीबन असांजा जेका हुआ राति एफ एम ॿुधी कुझु आया, कुझु वरी राब्तो कोन करे सघा, डायरेक्ट होॾां पहुची विया, त उन्हनि खे वरी राब्तो थियो, ख़बर पई त साॻी हिन जॻह ते अचिणो आहे, त वरी वापसी हेॾां अची विया। त सुभाणे जेको अचे पियो उन्हनि सभिनी चवंदासीं त हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे, हाजी इनायत जे नाले सां क्लिनिक मशहूरु आहे, होम्योपैथिक जे नाले सां असां बोर्ड वग़ैरह लॻंदासीं मशहूरु थी पवंदी, पर हाजी इनायत जे नाले सां मशहूरु आहे क्लिनिक। अचो पिया नवाबशाह मोड़ ते अचो, त ॿ रस्ता आहिनि हिते जा, हिकिड़ो नवाबशाह मोड़ आहे, ॿियो आहे स्टेशन, यानी फाटके खां अचो पिया त स्टेशन ते पहुचंदव, ॿ रस्ता आहिनि, हिकिड़ो रोड, इहे ॿ रस्ता, हिकिड़ो हिन कुंड में, हिकिड़ो हिन कुंड में, ॿिन्हिनि कुंडनि जे बिल्कुलु विच ते ई असांजी क्लिनिक आहे, हुतां ईंदव हितां ईंदव विच ते असांजी क्लिनिक अव्हां खे पवंदी, उन में अव्हां कंहिंखे बि पहुची वेंदव। जे तव्हां नवाबशाह मोड़ खां अचो पिया अव्हां सिधा स्टेशन जी तरफ़ ईंदव, तव्हांखे रोड ते निम जो वणु ॾिसण में ईंदो, ॿ टे चारि मेडिकल स्टोर, छो त नवाबशाह मोड़ खां जीअं निकिरंदव टे स्टोर मिलंदा सभिनी खां पहिरीं टे, पोइ हिते स्टोर उन्हनि खे अॻिते टे स्टोर आहिनि, पोइ अॻिते स्टेशन ताईं तमामु घणा स्टोर डॉक्टर्स वेठा आहिनि, पर शुरूआति इन्हनि टिनि मेडिकल स्टोरनि खां थींदी आहे। नवाबशाह मोड़ ते हुसैन मेडिकल स्टोर अॻिते ईंदव, सिर्फ़ु तव्हांखे इहे टे मेडिकल स्टोर मिलंदा, ऐं उन टे मेडिकल स्टोर वटि पहुची विया सम्झो मूं वटि पहुची विया, या कंहिंखे चवंदव पार्क वारी घिटी कहिड़ी आहे, टैंकी वारो पार्क आहे असां वटि मशहूरु आहे, पार्क वारी घिटी मशहूरु आहे, हुते पहुची विया, हुते पहुची मूंखे कॉल कंदव, अव्हांखे पाण असां मिली वेंदासीं। हुते पहुची बि ॾिसंदव साम्हूं निम जो वणु किथे लॻल आहे, हवा रोड स्टेशन रोड ते निम जो वणु हिते लॻल आहे, निम जे वण ते पहुची विया हेॾां पोइ ॾिसंदव मुंहिंजी क्लिनिक ॾिसण में अची, माना ॿुधाइण कुझु कुझु शयूं ॿुधाइण इन करे ॿुधायां पियो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि असांजा ॻोठ वारा, उन्हनि खे इहा निशानियूं जल्दी मिली थी वञनि, इन करे मां खोले सम्झायां पियो। प्रोग्राम में आख़िरी तरफ़ हलंदासीं पैगाम जी तरफ़, पैगाम में वञण ताईं असां इहो ई चवंदासीं अॼु जेको प्रोग्राम में असां बीमारी जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं, उन बीमारी में जेका मूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं बिज़नेसमैन जे हवाले सां, बिज़नेसमैन जे हवाले सां त उनमें सभई अची था वञनि, लाज़मी न आहे त जेको दुकानदार आहे उहा बिज़नेसमैन आहे, बिज़नेसमैन जो मतिलबु इहो आहे त जेको कारोबार करे पियो, कारोबार वकील आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो पंहिंजो रोज़ी रोज़क जे लाइ वञे पियो त उहो बि कारोबार में शुमारु आहे, त सभई कारोबार में शुमारु थी वञनि, डॉक्टर सां उहा बि रोज़गार लाइ वञनि पिया, कारोबार आहे, घर वेठा आहिनि त उहा बिज़नेसमैन कोन्हनि, उहा कारोबार कोन्हनि, त उहा कारोबार में सभई सभिनीनि सां इहे मामला थींदा आहिनि। शागिर्दनि स्टूडेंट्स आहिनि उहनि में नर्सरी क्लास खां वठी यूनिवर्सिटी ताईं उहा सभु स्टूडेंट्स आहिनि, उहा सभई इन कैटेगरीअ में शामिलु थी सघनि था, त इन करे मूं वर्ड वरितो कारोबार, बिज़नेसमैन या शागिर्द, इहा ॿ वर्ड मूं इस्तेमालु कयो छो त इन में कंहिं उमिरि जो नालो न ईंदो, बाबा हिकिड़ो साल ॿ साल न, उमिरि न ईंदी हिन में, इन में का भी तुम मर्द औरत इन में सभी अची वा उम्र वा भी सभी अची वा उन अलावा कारोबार वा टोटल जो कारोबार वह सभी इन में वर्ड में एक वर्ड में अची था वन बिजनेसमैन सभी शामिल थी था वन शागिर्द में सभी शामिल थी था वन को स्कूल वो को कॉलेज वो को यूनिवर्सिटी वो जहाँ पढ़ाइन पाया वह सभी इन में शामिल थी था वन इन शूँ सभी कें न कें उन में परेशान न ही थियण का तकलीफ थे थी मापी नंढा तो मापीन के बुधान तो वह अस वी अची सकता अस पेशेंट से पा डिस्कशन क्या क्लास में वनो था तकलीफ छा थे थी मन एक मिसाल दिया पो मन तुम समझी वो तो सभी किस्म से टेकअप उनमें अस पेश उनसे पुछंदा मिसाल तौर से स्टूडेंट आ क्लास में वे पो तो टीचर चवे पी तो ये ब्लैकबोर्ड के तरफ अचो छो तो ब्लैकबोर्ड चवन तो ब्लैकबोर्ड चो या स्टेज से अचो ये समझो तो यह सवाल जो जवाब इन बोर्ड से मुख्य लिखी दियो तो पेश उन याद भी है रात वो याद भी कर पढ़ी पे आया हिंसा स्कूल में भी पढ़ी पे रिपीट कर वो पर उसे बोर्ड से वही डगमगा गलत लिखी वो अल्फाज अगते बुध कर हेजिटेशन इनके चवंदा तो इन में इलाज यह शे सब खत्म थी सके थी एक्टिव अड़ो पेशेंट एक्टिव तुम बार अड़ो थी वो तो पेशेंट तवका टीचर्स वहाँ चवंदा तो छोकरो माशाल्लाह पढ़ाई में सुठो आ कमजोरी दिसो ना असल में गाल चाहे पढ़ाई पे छो पी वे कारोबार पे छो तो वे उनमें वजह गोल थोड़ा गौर करे पान से सुकून से वही अब समझी वो तो असि कमी हिंदे है अस इन कमी के पूरा कदास इंशाल्लाह अस अगते वन की कोशिश कर बाकी जो है मेहनत करन हर कम में लाजमी ना तो डॉक्टरी में हर कम में मेहनत करन असो कम आ सिलो दियण अल्लाह जो कम आ नीयत सा साफ नीयत से मेहनत कौ तो कवा की कामयाबी जरूर मिल अलहमदुल्ला अस नीयत साफ हुई तो चार पांच साल अस एफ एम थी चुका अवान से गड होम्योपैथिक इलाज कदे कदे चुका अल केतरा पेशेंट हुआ केतरा मू हुआ उन नासूर अड़ी खतरनाक बीमारियों जो इलाज ही न पो थी सके तो वह अलहमदुल्ला अल्लाह के हुकुम से तैयार थी वह होम्योपैथिक की दवाओं कोशिश कई दवा टाइम से वरती एहतियात परहेज कई अज वो खुशहाल हैं अस भी खुश थन्दा जैसे खबर पवी यार वो पेशेंट दवा वी वो तो आयो छो न सही वह तैयार थी या तो बस अस तैयार थी या ना बस इत ही अस खुश थी वो अचन न अचन वह खैर तैयार होजन बीमार न होजन ये न थे तो दवा खाधी को तकलीफ तो है पाँच इलाज न कराए मुकम्मल तो यह थोड़ा दुख जरूर थे तो इन ला इलाज मुकम्मल कराया बीमारी है तकलीफ है तो उन सभी जो होम्योपैथिक तरीके इलाज में इलाज मौजूद है तो सामिन प्रोग्राम में असि कोशिश रही है कुछ शुभ गौर कराने ला तो जहाँ इन गौर गाल गौर कजो सुबह आचार है क्लिनिक खुलल हूँ अची सको सुबह नवे का शाम पाँचे वगे ती मोबाइल नंबर मुझे जरूर याद रखो 0300 7899 84 84 7633 यो नंबर अस याद रखो अचो पे इजाज़त मिलूँ था सुबह क्लिनिक से अल्लाह खैर कहो इजाज़त अल्लाह निकेबान
0: जी हाँ समीन मूसा गड हुआ सकरन जहाँ मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह साहब वापस्ता है डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहाँ मर्ज फालिज खंग टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसान की पथरी इन सभी बीमार जो कामयाब इलाज किया वे तो डॉक्टर साहब रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तई आज इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में मरीजन जो इलाज कंदा हैं जुम्मो सुबह जो 9 का मंझंद 12 वगे तई आई बाकी 6 ही डे डॉक्टर साहब की क्लिनिक खुलल होंगी नोट सिर्फ दवा स्टोर तो डॉक्टर साहब वटा मिली छो जो होम्योपैथिक दवाओं वे डॉक्टर साहब वट स्टोर उतें मौजूद है सामिन वक्त जो एहसास प्रोग्राम सेहत की गाल जो भी सेहत जो राज होम्योपैथिक साण जो भी वक्त पुजे तो पुजाणी थे जैसे भी दुआ लायत खो मेजबान सलीम अहमद सरकारी के दौर में जरूर याद रखो जिंदगी अगर साथ दिनों बे प्रोग्राम में होंदस अवा सगन तेसी दीदा इजाजत सदाई गड अल्लाह वाही अलन के पान जेडा पेर तेडा खैरो खैर
10: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
11: Yeah।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाने अमाजे पेंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 6 वगे ताई परोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते जे लाए 0327-99-84-700।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
2: जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूँ।

फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा असर नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहादन सा मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वाले फाकी वजीर आजम नजीर तार चयो है हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम करण जो पाबंद है। असांजी गडियल हुकूमत है, इतिहादन की मशावरत का सवाए आइनी तरमीम किए कर सकते थी। वजीर आजम असाजो ए सदर भी वही इतिहाद जमात जो है। तरमीम से इतिहादन की सिग्नल बाद ही मशावरत के अगते वधाया वेंदो।

पाण के ब्रांड छॾींदड़ कुकिंग क्वीन अनमोल।

पिंकी जूं अदालती पेशी ते दहूं। पुलिस ते तशद करण ऐं ज़बरदस्ती बयान ॾियण जो इल्ज़ाम। सबूरी कार्रवाई जो ज़िमेवार अॻूणो मुड़ुसु करार। अनमोल उर्फ पिंकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सभु कुझु अॻूणो मुड़ुसु कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरीं लाहौर मां खपियो वियो, 15 ॾींहं रखण बाद 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा आहिनि। AIG कराची जी सदारत हेठि पिंकी खां थींदड़ जांच बाबति इजलास अहम फ़ैसिला कया विया।

0: केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिनकी कराची ए मलीरा की अदालत में पेश। कराची सेंट्रल की अदालत पिनकी के 70 दिन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। मलीरा की अदालत मंशियात केस में पिनकी की रिमांड वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। जेल मोकलण जो हुक्म 14 दिन अंदर केस जो चालान पेश करने की हिदायत। पुलिस जो अदालती फैसलो चैलेंज करने जो ऐलान। पुलिस पिनकी के बिनी अदालत में हथ कड़ी हणी सख्त सिक्योरिटी में पेश कयो।
1: सिंध में पानी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोलियल तकरारी कैनाल्स में पानी कणत वधाए छी। पंजाब सीजे ए तोंसा पंजाब लिंक कैनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खण लगो। शदीद पानी खोट के मुंह डींदड़ सिंध में पानी जो बहरान वधिक संगीन थी वो। बिना इजाजत पंजाब पारा खोलियल तकरारी लिंक कैनाल जो कें भी नोटिस न वरतो। सिंध के आबादगार में गणती की लहर छायल। सूबे में फसल की पोखी मुतासर थियण जो खदशो है।
0: सिंध हुकूमत जो बारन की बचत लाए लगायल स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने जो ऐलान। मार्केटू मामूल मूजिब खुलियल होंद। सीनियर वजीर शर्जील मेहमद है तो सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ए आवाम के वो रिलीफ दिनों है। डुखियन मुआशी हालत में भी आवाम ए कारोबारी तबके के मुफादन को तहफुज किया है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाने अवाजे पेंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-700।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।